मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, चक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि तदनुसार 2 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 52 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा

0: विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अपना पसंदीदा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
5: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।

0: मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आराधना में। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ, भोलेनाथ और आदि योगी जैसे अनगिनत नामों से जाना जाता है, भारतीय परंपरा में केवल एक देव ही नहीं बल्कि चेतना, कल्याण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। वे संहारक भी हैं, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि नव सृजन और अंधकार के अंत के लिए होता है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में सबसे पहला भजन।

दोस्तों, ये जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन इस मोह माया के जाल में हम सभी अक्सर फंस जाते हैं। सुख दुख इस जीवन के विभिन्न पड़ाव हैं। ईश्वर की कृपा से समस्याएं खत्म हो या ना हो, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर बदल जाता है। जो पहाड़ जैसा लगता है, वो एक छोटी सी कंकड़ी जैसा लगने लगता है। अकेलेपन का अंत हो जाता है और हम मान लेते हैं कि ईश्वर ही हमारा अंतिम और सच्चा सहारा है। तो मन का भटकाव और अकेलापन हमेशा

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आदिशक्ति इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार की मूल शक्ति है। वहीं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप धारण कर संसार का संचालन करती है। शिवजी जहां परम पिता है, वहीं भगवती आदिशक्ति जगन माता। एक माँ कभी भी अपने संतान का दुख देख नहीं सकती। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भाव से यदि हम उनके शरण में जाते हैं तो माँ अपने आंचल की छाया में लेकर सारे भय, संकट और पापों को हर लेती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।

जब भक्त को ये एहसास हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सब ईश्वर की ही कृपा है, वहीं से सच्ची पुकार जन्म लेती है। इतिहास साक्षी है, चाहे द्रौपदी की पुकार हो, गजराज गजेंद्र की पुकार हो या भक्त प्रहलाद।

सके। जब हृदय से पुकार निकलती है तो ईश्वर को तुरंत आना ही पड़ता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और जानता है कि माँ दौड़ी चली आएगी, ठीक वही भाव जब भक्त अपने इष्ट के प्रति रखता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी नजर आती है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए।

0: और इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बौद्ध ग्रंथ धम्म पद से पाठ।
1: भगवान बुद्ध से किसी ने चार प्रश्न पूछे। पहला तो यह कि मनुष्य का श्रेष्ठ धन क्या है। दूसरा प्रश्न यह था किसके अभ्यास से सुख मिलता है। तीसरा प्रश्न था सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है। और चौथा प्रश्न था किस प्रकार का जीवन श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार वर्णन किया है। सद्दीधवित्तम पुरुषस्य सेठम धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति सच्चम हवे साधुतरम रसानम पय्या जीविम जीवित माहुसेठम। इस संसार में मनुष्य का श्रेष्ठ धन है उसकी श्रद्धा। धर्म के अभ्यास से सुख की प्राप्ति होती है। सब रसों में उत्तम रस है।

0: सत्य, और जो जीवन प्रज्ञामय है वही जीवन श्रेष्ठतम है। भगवान बुद्ध से एक बार चार प्रश्न और पूछे गए। पहला प्रश्न था, मनुष्य पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को किस प्रकार पार करता है। दूसरा प्रश्न था, संसार रूपी सागर को किस प्रकार तैर कर पार किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न था, किस प्रकार दुख का अंत हो सकता है। और चौथा प्रश्न था, किस प्रकार मनुष्य शुद्ध होता है। उसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा, सद्धाय तरति ओघम अप्रमादेन अन्नवम वीर्येन दुःखम अच्येति पञ्याय परिशुज्यति। मनुष्य श्रद्धा के बल से पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को पार कर जाता है, अप्रमाद से संसार सागर को पार कर लेता है, और वह पराक्रम से दुख का अंत कर लेता है, और प्रज्ञा के बल से, विज्ञान के बल से वह परिशुद्ध होता है। भगवान बुद्ध से किसी ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य किस प्रकार प्रज्ञा प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न पूछा, किस प्रकार धन प्राप्त करता है। और तीसरा प्रश्न था, किस प्रकार मित्रों को प्राप्त करता है, किस प्रकार मित्रों की वृद्धि कर सकता है। चौथा प्रश्न था, ऐसा क्या कार्य है जिसके करने से परलोक में जाकर पछताना नहीं होता। भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया, सद्दहानो अरहतम धम्मम निब्बाण पत्या सुसूसा लभते पय्यम अपमत्तो विचक्षणो। निर्वाण की ओर ले जाने वाले अर्हतों के धर्म में जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विनय युक्त होता है, प्रमाद नहीं करता, ऐसा बुद्धिमान पुरुष प्रज्ञा को प्राप्त करता है। पतिरूपकारी धुरवा उठाता विन्दते धनम सच्चेन कित्तिम पप्पोति ददम मित्तानि गंधति। उचित काम को करने वाला दृढ़ और प्रयत्नशील पुरुष धन को प्राप्त कर सकता है। वह कीर्ति सत्य के बल से प्राप्त करता है और दान देकर मित्रों की वृद्धि कर सकता है। सच्चम धम्मो धिति चागो सवे पेचन सोचति अस्मालोका परम लोकम सवे पेचन सोचति। जिस श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य की, धर्म की, धृति की और त्याग की वृत्ति होती है, ये चार धर्म जिस व्यक्ति में होते हैं, वह परलोक में जाकर कभी नहीं पछताता। इसलिए सत्य का, धर्म का, धृति का और त्याग का मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए।
1: गौरव ग्रंथों से इसमें अभी आप सुन रहे थे बौद्ध ग्रंथ धम्म पद से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मुकेश पी सिंह से, पी मसीह से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय है फूलों की खेती में जिब्रोलिक अम्ल का महत्व।
1: किसान भैया, अरे देखा अपन सभी खेती किसानी करी थी और खेती किसानी के साथ देखा 4 पैसा आमदनी के लिए भाई बागवानी भी कैली और तमाम तरह के जैसे कुक्कुट पालन बाटे। तो कुछ किसान भैया अरे फूलों के भी खेती करते हैं जैसे कि जो उनके 4 पैसा के आमदनी हो। तो फूल के खेती कैसे में आजकल जो आधुनिक तकनीक आ गई बाटे और ओकर जो विधि

0: ही बा, अगर अच्छे तरीके से उसका अपनाए के कीन जाई तो निश्चित बा कि कुछ पैदावार भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिली और 4 पैसा के भाई आमदनी ज़्यादा हुई। तो फूल के खेती में एक बात आवत है जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग के, तो एक देखा आज पंचायती में जानकार नहीं आई बाटे डॉक्टर मुकेश पीएम जी, पीएम प्रसाद निदेशालय सीआरएस में आए। डॉक्टर साहब आपके कार्यक्रम में स्वागत बा।
1: बहुत
0: सबसे
1: बहुत
0: पहले
1: धन्यवाद आपका।
0: किसान भैया, अरे हमरे ई जाना चाहिए कि फूल के खेती में जिब्रेलिक अम्ल जौन उपयोग किए जाते ई आ का।
1: जिब्रेलिक अम्ल एक वृद्धि नियामक रेगुलेटर है, जिसे हिंदी में पौधों की वृद्धि नियामक कहते हैं। फूलों की खेती में इसका प्रयोग स्प्रे द्वारा 8 दिन के उपरांत छटाई करने के बाद किया जाता है।
0: मतलब काहे का मतलब कि ये जौन अपन फूल हैं एक का वृद्धि करे के लिए कैसे,
1: हाँ
0: किस कौन कौन तरीके के वृद्धि करे के लिए।
1: हाँ ये जब हम लोग फूलों की कटाई छटाई कर देते हैं उनके पौधों की, तब हम उसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी फूल देना शुरू
0: जल्दी
1: कर
0: बढ़प
1: दे।
0: शुरू हो
1: जी
0: जाता है।
1: हाँ जी हाँ
0: और एक बात आवत है कि एका कब करे चाहिए, मतलब एक कहा जाते कि भाई जैसे फूल के भाई हम तैयार बाटे या फिर शुरुआती दौर में बा, तो कब कौने अवस्था में ये अम्ल के हम प्रयोग करी।
1: देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हम लोग कभी-कभी देर कर देते हैं फसल उगाने के लिए, और हम लोग बगल वाले पड़ोसी किसान से हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जब हम पौध लगा रहे हैं, अपने फूलों को लगा रहे हैं, उस समय हम इसका प्रयोग जब करेंगे तो हम उसके पड़ोसी वाले जो खेत के, हमारी भी फसल बराबर आ जाती है कम समय में। तो इसको, इसकी वृद्धि के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
0: अच्छा एक चीज जौन जिब्रेलिक अम्ल बा, ये हर प्रकार के जैसे फूल के लिए प्रयोग में लावा जा सकते है। कुछ जैसे फूल के खेती जैसे गेंदा बा, गुलाब बा, या सभी प्रकार के फूल में इस्तेमाल किए जा सकते है का।
1: बहुत अच्छी बात आपने पूछी है किसान भाइयों। ये जानकारी बहुत ही अच्छी है कि ये जिब्रेलिक अम्ल एक पौधों को वृद्धि के लिए हम लोग फूल, चाहे किसी भी प्रकार के फूल हो, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो गेंदा हो, चाहे वो जरबेरा हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो,
0: कौनों तरह के
1: किसी भी प्रकार का। हमने कहा कि जब हम किसी भी कारणवश खेती करने में लेट हो जाते हैं या पौध लगाने में हमें देरी होती है, उस समय हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। या फिर जब हमें फूल जल्दी प्राप्त करने होते हैं, तब हम लोग इस अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं।
0: तो जैसे डॉक्टर साहब की अल फूल के जौन प्रकृति होता है, सब फूल के अलग अलग अपन प्रकृति होते हैं, तो ओके कोनो विधि बा कि एकरे लिए भाई इतना प्रयोग करे या फिर ना प्रयोग करे, तो ऐसे कोनो मतलब कि नियम बात है कि जैसे सब पे करी भाई एक साथ है ना, ऐसे सब प्रयोग कर दी।
1: हाँ, एक ग्राम लेकर के 1000 ml में इसको मिलाते हैं
0: अच्छा
1: और उसको प्रयोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पौधा बड़ा होता है, बहुत दिन वाला होता है, तो उसी की हिसाब से हम उसकी मात्रा भी बढ़ा लिया करते हैं। लेकिन इसकी पहले मानक है 1 ग्राम में 1000 ml में इसकी छिड़काव करने के लिए।
0: अच्छा एक डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात बताए रहे हैं कि जो अम्ल होते हैं ये फल पके में बहुत तेज मदद करते हैं। और एक बात और आवत है कि ये जो जैसे हम बात मात्रा तो बताएं दें, एका कितनी बार कब प्रयोग करें।
1: हाँ, बहुत सही बात पूछे हैं आप। 40 से 55 दिन और 60 दिन के बाद रोपण के हम लोग इसकी छिड़काव कर देते हैं। इसका प्रयोग करने से, देखिए, सबसे अच्छी बात हम आपको बता दे रहे हैं, ये फूलों के किसानों के लिए भी लागू होती है और भी सब्जी के भी किसानों के लिए ये लागू हो जाती है कि मार्केट में हमें समय से पहले अगर हम अपनी फसल को ले जाना चाहते हैं तब हम इसको प्रयोग कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: और अगर हम लेट हो गए हैं तो लेट वाले भी जो हैं इसकी सहायता से सही समय पे
0: सही
1: अपना
0: समय,
1: फसल को
0: ये तो
1: पहुंचा
0: बहुत
1: सकते
0: अच्छी
1: हैं।
0: बात बा कि भाई जैसे
1: जी
0: कि घबराए गए भैया हम तो भाई देखा पीछे हो गए, लेकिन एका प्रयोग करे से भाई समय से पहले हमारा माल तैयार हो गया और हम
1: जी
0: बाजार में उकाओ साथे
1: जी
0: साथे बेच दी। ये
1: जी
0: तो बहुत बढ़िया बात है एकर
1: जी
0: विधि। और एक चीज आता आवत है कि भैया एक

0: इस्तेमाल तो करते थे। का एक कोनो दुष्परिणामों व प्रतिकूल असर पड़ा थे पे?
1: नहीं, देखिए हर चीज़ का इस्तेमाल करने पर कुछ ना कुछ तो ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर तो पड़ता ही है
0: मतलब
1: हर एक
0: जितनी
1: चीज़ पे।
0: मात्रा बताएं
1: हाँ,
0: ना,
1: जितनी
0: 1,000 लीटर में एक
1: 1 ग्राम जो
0: एक
1: है,
0: ग्राम
1: हाँ इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके पौधे को और आपके फूलों को
0: नुकसान
1: नुकसान
0: पहुंचे,
1: होगा।
0: नुकसान
1: अगर आप
0: पहुंचे।
1: सही मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी पंखुड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक होंगी, जिसमें कि मार्केट में आपको अच्छा प्राइस मिलता है।
0: अच्छा, एक एक बात और आवत है कि एका जैसे आप कहें कि स्प्रे कहीं या छिड़काव कीन जात है, तो एका प्रयोग में लावे के लिए का सावधानी बरते किसान भैया रे?
1: बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों से हमें इसको दूर रखना है और अपने हाथ और अपने मुंह और अपने आँखों को इससे बचा के रखना है। इसकी सावधानी हमें बहुत ध्यान पूर्वक देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना बताया जाता है मात्रा, उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, अन्यथा हमारी फसल

0: इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों से हमें इसको दूर रखना है और अपने हाथ और अपने मुंह और अपने आँखों को इससे बचा के रखना है। इसकी सावधानी हमें बहुत ध्यान पूर्वक देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना बताया जाता है मात्रा, उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, अन्यथा हमारी फसलों को तो नुकसान होगा ही होगा और उसके आने वाले प्रोडक्ट का भी नुकसान पहुँचेगा।
1: एक बात और आवत है कि जैसे अपने किसान भैया रे एक साथे साथे कुछ रसायन के भी उर्वरक के भी इस्तेमाल करत, तो उर्वरक बा कुछ कीटनाशक भी बाटे और ये हमले बा, तो इसमें कैसे कितना तालमेल हो चाहिए?
0: हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अगर हम उर्वरक डाल रहे हैं और अगर हम इसका जिबरेलिक एसिड का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके और इसके अंतराल में कम से कम 1 सप्ताह का अंतर रखना अनिवार्य है, नहीं
1: अच्छा
0: तो पौधे जलने की संभावना हो
1: अच्छा
0: जाती है।
1: तो मतलब कीटनाशक अगर डाले हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद एक प्रयोग में लावें,
0: प्रयोग में
1: तो
0: लाना है।
1: मतलब का कुछ ऐसी विधि बा या फिर ऐसा कुछ जैसे मान लें कि अगर एक प्रकृति की तरीके से मान लें वो अपने से बढ़त बाटे कि या जैसे उन्हीं पर प्रयोग करें जो पौधा भाई बढ़त नहीं ना छोटा बाटे या फिर ओकर कहूँ जहाँ वृद्धि रुक गई बा तब इस्तेमाल करें कि एक नियम बा कि भैया एक डाल दे तो एक बहुत तेजी के साथ बढ़ी ऐसा कुछ?
0: हाँ, किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात है ये। आप सबों को जानकारी इसके बारे में रखनी चाहिए और इसका प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जबकि जितना कि वैज्ञानिकों की तकनीकी का द्वारा दिया गया है।
1: देखे भैया कितनी बढ़िया आप डॉक्टर साहब जानकारी देहन और किसान भैया रे निश्चित बा कि डॉक्टर साहब जत्ता बताएं अगर उही हिसाब से ई अम्ल के प्रयोग में लई हैं तो निश्चित बा कि फसल के पैदावार तो बढ़बे करी और 4 पैसा के आमदनी होए। डॉक्टर साहब आप पंचायती मायन अपने हमरे किसान भैया रे के इतनी बढ़िया जानकारी देहन, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर मुकेश पी मसीह से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय था फूलों की खेती में जिब्रेलिक अम्ल का महत्व। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और अब समय हो चला है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुनने का। तो आइए श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं डॉक्टर आशुतोष मालवीय की वार्ता, वर्षा ऋतु में होने वाली परेशानियां और सावधानियां।
1: वर्षा काल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, यह सभी को पसंद भी बहुत होता है, परंतु चूंकि इस मौसम में आर्द्रता और नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, अतः विभिन्न प्रकार की त्वचा की परेशानियां एवं पाचन तंत्र के रोग बढ़ भी जाते हैं, जैसे अपच, अम्लपित्त, उल्टियां, दस्त, सिरदर्द, बुखार, जुखाम, खांसी आदि तमाम परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इन दिनों पानी की अशुद्धता के कारण पीलिया और पेचिश आदि की परेशानियां भी खूब दिखाई देने लगती हैं। नमी और पसीने के कारण त्वचा में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिनमें खुजली और जलन की शिकायत बहुधा देखी जाती है। वर्षा काल में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कभी भी बासी भोजन का प्रयोग न करें, क्योंकि नमी के कारण इसमें विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ बासी भोजन रस रहित हो जाता है, जिससे इसे पचने में कठिनाई होती है तथा शरीर के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। घर के आसपास कभी भी पानी एकत्र न होने दें, क्योंकि एकत्र पानी में मलेरिया या डेंगू आदि बुखार के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। बासी पानी कतई नहीं पीना चाहिए, हमेशा स्वच्छ जल का प्रयोग ही करें। बरसात के दिनों में कुएं के पानी को पीने से बचना चाहिए, पर यदि कोई विकल्प ही ना हो तो इस कुएं के पानी को उबाल एवं कर एवं छान कर प्रयोग किया जा सकता है। वर्षा काल में दिन में देर में तक सोना वर्जित है, इससे शरीर में

0: पित्त वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। हाँ, यदि जरूरी हो तो 30-45 मिनट तक विश्राम अवश्य किया जा सकता है। वर्षा काल में दही मट्ठे का प्रयोग कदापि न करें। इस समय यह दही या मट्ठा पित्त प्रकोप को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त खट्टे पदार्थ, बासी भोजन, अधिक मसाले युक्त आहार से बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आहार अम्लपित्त, सिरदर्द आदि समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। वर्षा काल की धूप बहुत तेज होती है, अतः सिर पर बिना सूती कपड़ा रखे या टोपी पहने निकलना उचित नहीं होता, और धूप से आकर ठंडा पानी कदाचित ना पिए। इससे जुखाम, खांसी और बुखार की समस्याएं तत्काल उत्पन्न हो जाती हैं। वर्षा में गीले कपड़ों को ना पहने अथवा नमी युक्त बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा की परेशानियां बढ़ जाती हैं। दिन में दो आहारों के बीच में लगभग 6-7 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए। चूंकि वर्षा काल में आमाशायिक अम्ल कमजोर हो जाता है, यानी एक आहार के पचने में काफी समय लग जाता है। कटे हुए रखे बासी फल का प्रयोग कदापि न करें। वर्षा काल में पत्तेदार सब्जियों को खूब अच्छी तरह साफ करके उबले पानी से धोकर ही प्रयोग करना चाहिए, और आवश्यकता न हो तो वर्षा में पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में तुलसी की 6 से 7 पत्ती का रोज प्रयोग करना चाहिए। मीठी नीम की पत्तियां दाल अथवा सब्जियों में अवश्य डलवाइए। चावल को पकाते समय काली मिर्च के कुछ दाने या तेज पत्ते का प्रयोग अवश्य करिए। इन प्रयोगों से पाचन तंत्र ठीक रहता है तथा भोजन भली भांति पच जाता है। इन दिनों गेहूं, जौ, काला चना, आम, जामुन, शुद्ध शहद का प्रयोग लाभदायक होता है। नित्य के आहार में अत्यंत सुपाच्य एवं बहुत कम मसाले तेल से बना हुआ भोजन ही करना उचित होता है। प्रातः काल हल्का व्यायाम अथवा योग प्राणायाम अवश्य करें। यह शरीर के पाचन को मजबूत करता है, साथ ही साथ शरीर की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता रहता है। वर्षा ऋतु में शुद्ध पानी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करते रहना चाहिए, ताकि शरीर के गंदगी निकलती रहा करे।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर आशुतोष मालवीय की वार्ता, वर्षा ऋतु में होने वाली परेशानियां और सावधानियां। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, और अब श्रोताओं, समय हो चला है हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुनने का।

श्रोताओं आपको याद दिला दें, सुबह 7:30 पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट और रात 10 बजे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम रिले करेंगे।

श्री राम चरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम होगा सुबह 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:45 पर उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन सुनवाएंगे। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज रोज की तरह अपने समय पर यानी सुबह 8:45 पर होगा। प्रस्तोत्री होंगी मोना पांडे और प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। फिल्म संगीत सुबह 9 बजे, 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर, शाम 7:30 पर और रात 8:15 पर सुनना न भूलिएगा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर शिवानी केसरवानी से गीत भजन सुनेगा। लोक गीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे संगीता मिश्रा, त्रिभुवन लाल यादव और श्रीकांत वैश्य, और दोपहर 2:30 पर मोहन लाल कांसिकार, संगीता राय और सरोज सिन्हा के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। दिन में 11:15 पर बालसंग कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे कहानी समझदार टिंकू पिंकू। 1:15 अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेगा हेलो अनुरोध, जो कि आपके ही अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत करती हैं मधु कुमार। 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण बच्चे सुनेंगे समर प्रताप सिंह की कहानी मूर्ख चोर।

0: युवानी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज का आकर्षण हेलो युवा। समय होगा वही शाम 5:15। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता। बारिश के मौसम में नाक कान व गले में होने वाली आम समस्याएं और उनका निदान, साथ ही धर्मदीन यादव और साथियों से लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। रात 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे। कार्यक्रम चिट्ठी आई है में प्रतिभागी होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। रात 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार होगा, इसमें कृष्ण मोहन मिश्र के लिखी झलकी सुनेगा हवाई उड़ान। गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम कहकशा, इसका आनंद लीजिएगा रात 9:30 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो के घड़ी में 6:55 होने के हैं। अब सुनेंगे
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए।

इनमें वर्णित ज्ञान, वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि, वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी अपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और अब समय है फिल्मों से भजन सुनने का। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुर संगम फिल्म से ये भजन राजन साजन मिश्र के स्वर में, वसंत देव की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं चार धाम फिल्म से भजन। हरिहरन का स्वर है, उदय शंकर पाणी की शब्द रचना, सुरेंद्र कोहली का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत नशा मुक्त समाज के निर्माण में जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में खेलों का आयोजन, वाकाथन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक

0: कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
1: प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र संचालन को लेकर आज दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
1: तेल विपणन कंपनियों ने कल 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी मेरा डायरेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे और 1 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आयोग के दायरे में आने वाली समूह गा की सभी भर्तियों के लिए पीईटी अनिवार्य होगी। पीईटी का स्कोर 3 वर्ष यानी वर्ष 2028 तक मान्य रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन माह में राज्य के सभी शिव मंदिरों में दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सावन के पहले सोमवार पर कल प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में उमड़ने वाली कांवड़ यात्रियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज से लेकर कल तक कई मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में कल से 12 अगस्त तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी 10 अगस्त तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। कांवड़ यात्रा से संबंधित जिलों में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में कल मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

0: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल अयोध्या में श्रीराम लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
1: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई वो जेल में, बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं उसके हम सब लोग चिंतित हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी जो उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कल वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पदक तालिका में देश को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत के 8 खिलाड़ियों ने कल स्वर्ण पदक जीते। मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, प्रिया खड़गस, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और पैरा एथलीट सोमन राणा ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश के कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 13 पर पहुंचा दी। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हम आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट।

0: जीवट वाली बॉक्सर हैं। ट्रायल्स में निखत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा को हराकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी। उनके मुक्कों की धार कल सही इंग्लैंड की रूबी व्हाइट ने। पूरा स्टेडियम साक्षी बना साक्षी के सनसनाते प्रहारों का। साक्षी ने 5-0 से बाउट जीती और एक बार फिर स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रगान की धुन सुनिश्चित कर दी।
1: The Indians are doing very well. From now onwards, we want all the gold medals because we have a strong team and we have trained so hard to win gold medals.
0: भारतीय फौज में एंट्री पाने वाली पहली महिला बॉक्सर राजस्थान की अरुंधति चौधरी के विरुद्ध थी इंग्लैंड की शांटिल रीड 70 किलोग्राम में। लगा वही कहानी एक बार फिर कॉपी पेस्ट की जा रही है जो पहले 4 बार कही जा चुकी थी। 5-0 का निर्णय, भारत की जीत और दिन का 5वां स्वर्ण पदक।
2: Gold medalist and Commonwealth Games champion representing India, Arundhati Chaudhary.
0: इसके बाद 75 किलोग्राम वर्ग में वर्तमान में भारत की सबसे मशहूर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन रिंग में उतरी। अभी तक बहुत विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पिछली सारी लड़ाइयां जीती थी, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया की एमा सू ग्रीन ट्री उन पर 20 साबित हुई। दूसरे राउंड के बाद निर्णायकों के दिए अंकों को देखें तो दोनों के बराबर थे, यानी तीसरा राउंड निर्णायक होना था। यहां पर एक बार फिर एमा ने बाजी मार ली। लवलीना 1-4 से मुकाबला हार बैठी और उन्हें रजत पदक पर संतोष करना पड़ा।
2: सिल्वर मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया लवलीना बोरगोहेन।
3: अगर किसी मुकाबले ने आखिरी पल तक दर्शकों की धड़कनें बढ़ाए रखी तो वो थे सचिन सिवाच। दोनों मुक्केबाजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और जीत हार का फैसला आखिरी क्षणों तक टला रहा, लेकिन मुकाबले के अंतिम सेकंड में सचिन के एक जोरदार पंच ने विरोधी को लड़खड़ा दिया और उन्हें स्टैंडिंग काउंट लेना पड़ा। यही पल मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से सचिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के स्वर्णिम अभियान में एक और चमक दार अध्याय जोड़ दिया।
2: Now Commonwealth Games champion in the red corner from India, Sachin.
4: अभी तो हमारा मैं एम तो अभी एशियन गेम कौन ही प्लेयर रहेगा दादा, तो मैं यही चाहूंगा कि आगे आईडिया के खिलाड़ी और अच्छा करें।
3: अगली बारी थी अंकुश पंघाल की। शुरुआती दबाव के बाद अंकुश ने अपने काउंटर पंच और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले की तस्वीर बदल दी। उनके प्रतिद्वंदी शितु पर एक अंक की कटौती भी हुई जिसका अंकुश ने पूरा फायदा उठाया। आखिरी क्षणों तक उन्होंने बढ़त बनाए रखी और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से मुकाबला जीतकर भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
2: And now Commonwealth Games champion in the red corner for India.
3: मणिपुर के चपल बॉक्सर जादूमणि ने एक तिलिस्म मचा रखा था पिछले दिनों, लेकिन कल 55 किलोग्राम में उनका जादू नहीं चला। कुछ तो वो ऑफ कलर रहे तो कुछ हाथ रहा ऑस्ट्रेलिया के जेड डिक्सन का। जादूमणि ने अपनी ओर से संघर्ष तो बहुत किया लेकिन वो काफी नहीं था। 0-5 से वो ये बाउट हार बैठे, लेकिन सिल्वर मेडल तो उनके गले में आया ही।
5: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश हूँ। टफ फाइट था, इस कंपटीशन में जो मेरा गलतियाँ है उसको मैं सुधारने के लिए कोशिश करूँगा।
3: दिन का आखिरी भारतीय फाइनल था सुपर हैवीवेट वर्ग का, जहां सभी की निगाहें नरेंद्र बरवाल पर थी। फाइनल में इंग्लैंड के डोमन थॉमस ने उनकी लय को शुरुआत से ही पढ़ लिया। मुकाबले के आखिरी राउंड में नरेंद्र ने वापसी की पूरी कोशिश की, लगातार हमले भी किए, लेकिन थॉमस हर बार का जवाब देने में सफल रहे। आखिरकार जजों ने सर्वसम्मति से मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में दिया।
0: इससे पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था 2018 गोल्ड कोस्ट में, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। यहाँ पर रहे कुल 10 पदक, लेकिन उनमें से 7 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक। सुनहरे अक्षरों में इतिहास के सीने पर लिखी हुई

0: عبارت. ट्रिपल जंप यानी तिहरी कूद में दोहरी सफलता भारत के हिस्से में आई. तमिलनाडु से आने वाले 26 साल के प्रवीण चित्रावेल की खास बात है उनका खुद पर विश्वास. इसके पहले 2022 बर्मिंघम खेलों में वे कांस्य पदक से चूक गए थे, लेकिन कल का स्टेज तो बस उनके लिए ही था. अपने चौथे प्रयास में 16.58 मीटर की कूद उन्हें ले आई दूसरे स्थान पर और भारत के लिए रजत पदक पक्का किया उन्होंने.
1: You know, I'm waiting for this medal 4 years. Last Commonwealth Games, I lost medal in 2 centimeters. But this time, silver and bronze with India. Hopefully, I'll do again next Commonwealth Games in India.
0: सेल्वा प्रभु थिरुमारन, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं. बचपन से ही भागने कूदने का जुनून था उनको. बच्चे की जिद देख पिता ने अपनी 4 एकड़ जमीन बेच दी और बेटे ने पिता के त्याग को जाया नहीं होने दिया. 15.52 मीटर अपने 5वें प्रयास में कूदे और भारत के लिए स्पर्धा में 2 पदक पक्के हो गए.
2: I could have jumped little far, but you know, it's all about I get the medal for the country. I'm so feel proud, you know.
0: अब बात पैरा शॉटपट F57 स्पर्धा की. गजब प्रदर्शन. एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक की आस पूरी की इस स्पर्धा ने, और ये आस पूरी की बिहार के लाल सोमन राणा ने. सोमन ने अपना गोला फेंका 13.40 मीटर तक, और एथलेटिक्स में भी भारतीय राष्ट्रगान की धुन पक्की करती. एक माइन विस्फोट में अपना पैर गवा दिया था सोमन ने, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने संकल्प शक्ति को नहीं गंवाया. पिछले खेलों में वो रजत पदक लेकर आए थे और यहाँ पर सारी कमी दूर कर दी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर.
3: बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इतना बड़े मंच पर और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल और 2 गोल्ड एंड सिल्वर मेडल दोनों.
0: सोमन के साथी शुभम जुएल, उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में अपना पूरा दम लगा दिया. हुंकार भरकर जो गोला फेंका वो गया 13.28 मीटर दूर. रजत पदक उनका हुआ. इत्तफाक है कि दोनों ही फौज में हैं और शुभम ने तो अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग भी फौज में आने के बाद बस 3 साल पहले ही शुरू की थी. इन दोनों पैरा एथलीटों को, उनके जज्बे, संकल्प और उनके जीवट को हमारा नमन है. 10,000 मीटर में गुलवीर सिंह ने रजत पदक पाया था और अब बारी थी 5,000 मीटर की. आखिरी लैप में जोर लगाया, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने वाले तीसरे एथलीट बन पाए कांस्य पदक. समय रहा 13:24.35. एक और अनूठी बात, एक ही गेम्स में एथलेटिक्स में 2 पदक कमाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए वो. पैरा 1500 मीटर में रमेश षणमुगम 7वें स्थान पर रहे. बदकिस्मत रही 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका कांस्य पदक से चूक गई, 4थे स्थान पर रही. तो इसी दौड़ में रवीना अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सकी. वहीं पोल वॉल्ट में देव कुमार मीला और उनके साथ ही ट्रेनिंग करने वाले कुलदीप कुमार, उनसे उम्मीदें थी. देव 5.30 मीटर की दूरी के ऊपर नहीं जा सके, 4थे स्थान पर रह गए, जबकि कुलदीप 6थे स्थान पर आए. 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भी भारतीय टीम कभी भी प्रतियोगिता में दिखी ही नहीं और 6थे स्थान पर आई.
4: जूडो मैट पर कल भारत का अभियान उतार चढ़ाव से भरा रहा. महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति शर्मा ने बेहतरीन मैट अवेयरनेस और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की कोना क्रिस्टी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. हालांकि अंतिम 4 के मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की साया मिडिल्टन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांस्य पदक मुकाबले में उन्नति ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोस्टर को एपों के जरिए मात दी और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया. वहीं पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग में हर्ष तोकस का सफर भी रोमांच से भरपूर रहा. क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उन्होंने रेपेचाज में समोआ के पेनियामिना परसिवल को एपों से हरा कर शानदार वापसी की और कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई. हालांकि पदक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की केशिन ओची ने उन्हें मात दी और हर्ष का अभियान 4थे स्थान के साथ समाप्त हुआ. इसके अलावा पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में करणजीत सिंह मान क्वार्टर फाइनल में कनाडा के गुयोम गोलिन से हार गए. महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में इनुगनबी ताखिलमांबम ने भी भरपूर संघर्ष किया. क्वार्टर फाइनल में कनाडा के चार्ली थिबॉल से हारने के बाद उन्हें रेपेचाज के जरिए वापसी का मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड की जेमिमा यीट्स ब्राउन के खिलाफ वो जीत दर्ज नहीं कर सकी. कुल मिलाकर जूडो मैट पर भारत के लिए ये दिन संघर्ष, वापसी और सीख तीनों का मिश्रण रहा. साइकिलिंग ट्रैक पर भारत की उम्मीदें तेज रफ्तार से आगे तो बढ़ी पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई. स्प्रिंट से लेकर स्क्रैच रेस तक भारतीय खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाया, लेकिन अगले दौर का

टिकट हासिल नहीं हो सका। पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में रोजित सिंह यांगलेम ने 10.297 सेकंड के समय के साथ 22वें स्थान पर रहते हुए अपनी टाइम ट्रायल पूरी की। वहीं रोनाल्डो सिंह लेतोंजाम 10.331 सेकंड के साथ 24वें और डेविड बेकहम 25वें स्थान पर रहे। इसके बाद 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस में भी भारत की चुनौती आगे नहीं बढ़ सकी। हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार अपनी अपनी हीट पूरी नहीं कर सके। After rewriting history in Birmingham, India's lawn bowlers arrived

0: वीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार अपनी अपनी हीट पूरी नहीं कर सके। After rewriting history in Birmingham, India's lawn bowlers arrived in Glasgow carrying the hopes of building on that remarkable legacy. The sport that once delivered India's first ever Commonwealth Games gold and silver medals had once again raised expectations. This time, though, the decisive moments belonged to the oppositions. In the men's pairs, Navneet Singh and Dinesh Kumar looked in outstanding touch throughout the sectional stage. Four consecutive victories had put the Indian duo firmly on course for the knockout rounds, making their clash against England's Nick Bread and Jamie Walker a crucial one. The contest lived up to its billing, with neither side willing to give an inch before it was eventually decided in a tie break. England held its nerve in the decisive moments, bringing India's impressive winning run and its knockout hopes to an end. Meanwhile, in the women's singles, Nayanmoni Sakia also started brightly against South Africa's Bridget Hasselman. The South African carried the momentum into the decider, ending Sakia's campaign and closing India's challenge in the event.
1: और अब आज होने वाले मुकाबलों पर एक नजर। ट्रैक साइकिलिंग में 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस में हर्षवीर सिंह सेखों और दिनेश कुमार होंगे, 100 मीटर टाइम ट्रायल में रोनाल्डो सिंह, जबकि पैरा साइकिलिंग में 1000 मीटर टाइम ट्रायल महिला मुकाबले में लिशा दास वेलोड्रम में होंगी।
0: इंडिया विल हैव 3 जुडोकास इन एक्शन टुडे विद ऑल बिगनिंग देयर कैंपेन्स फ्रॉम द राउंड ऑफ 16। इशरूप नारंग विमेन 78 kg, अवतार सिंह इन मेंस 100 kg एंड यश खंगास इन मेंस प्लस 100 kg।
1: पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 63 स्वर्ण पदक सहित कुल 154 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड 26 स्वर्ण पदक सहित कुल 100 पदक लेकर दूसरे स्थान पर आ गया है और कनाडा 18 स्वर्ण सहित 59 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत ने 10वें दिन बॉक्सिंग स्वर्ण पदकों के चलते लंबी छलांग लगाई है। 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक लेकर भारत चौथे स्थान पर आ गया है।
0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे प्रेरणा शर्मा और मेरे सहयोगी अनुपम पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: The Commonwealth Games.
3: That's what you call the performance, guys. क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम की, भारतीय दल की इस बार ग्लासगो में। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि अगला जो कॉमनवेल्थ है वो हिंदुस्तान में होने वाला, भारत की सरजमी पे होने वाला, तो एक बहुत बूस्ट जो है वो मिलता है। एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड कि जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं अहमदाबाद में जो खेले जाएंगे 2030 में दोस्त, वो हमारे लिए अब तक के सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल ग्लासगो होने चाहिए और उस कॉमनवेल्थ होने चाहिए। और उसकी जो नींव है वो ऑलरेडी हमने ग्लासगो में रख दी है दोस्तों। आज अंतिम दिन है एंड लुक फॉरवर्ड दैट विल बी एबल टू ऐड सम मोर मेडल्स इन द टैली फॉर इंडिया। लेकिन अभी मैं जो ऐड करने जा रहा हूँ वो एक बेहतरीन वाला गाना, बहुत ही प्यारा वाला ट्रैक आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली दसाना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन। राग है बैरागी भैरव और रचना 3 ताल में निबद्ध है। लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत उस्ताद आमिर खान का राग बैरागी भैरव में आपने सुना ख्याल गायन। 8 बज गए हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की, उम्मीदवारों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने एक माह तक चले अभियान के दौरान बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही तेज करने की धमकी दी। तेहरान ने प्रमुख अमेरिकी और इसराइल ऊर्जा अवसंरचनाओं पर जवाबी कार्यवाही की चेतावनी दी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, 10वें दिन 8 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और ओडिशा, गुजरात और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने आज गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: नमस्कार दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के सभी श्रोताओं को एक प्यारा सा सुप्रभात। मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो का अपना सुबह का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, उगता हुआ सूरज हमेशा यही संदेश देता है कि उम्मीद जो है वो कभी पुरानी नहीं होती। हर सवेरा कहता है कि फिर से मुस्कुराइए, जो छूट गया कल उसे आज भूल जाइए, उम्मीदों की रोशनी लेकर आगे।
1: इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदाय बनने
2: के साथ। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कांग्रेस जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान टुडे। Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. U.S. President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
3: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak's, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With some

0: Any news?
1: Ahmedabad will officially receive the Commonwealth Games flag and the host button during the closing ceremony of the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the athletes for their outstanding performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
2: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise." Also called on to support nation building to service, education and discipline. The Times of India reports, "Monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter," adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in Valley as terror attack claims too. TRP link being probed, leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider, informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel. What was once a niche pursuit for seasoned mountaineers is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज़्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 ज़िलों में तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अहम अमरीकी और इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क गिर जन भागीदारी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से ज़्यादा मकामात से नौजवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा माई भारत के रजाकार, नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार, नौजवानों के क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गैर सरकारी तंजीमें, सनती अंजुमनों के नौजवानों के शोबे और 125 से ज़्यादा शराकत दार रूहानी तंजीमें भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में हर इतवार को मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि अवाम में मनशियात के नुकसानात से मुतालिक आगही पैदा की जा सके और मनशियात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अवामी शिरकत को फ़रोग दिया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियत सिर्फ इसी सूरत में एक मुतहर्रिक क़ुव्वत बनती है।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वेरी वार्म वेलकम मेरे सभी दोस्तों को। मैं हूँ आपकी अपनी, आपकी होस्ट और दोस्त मोना पांडे और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी प्रयागराज।

दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में यूं तो मुसाफिर बहुत मिलते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हम सफ़र बन जाते हैं बिना किसी खून के रिश्ते के भी, जो दिल के सबसे करीब आ जाते हैं, उन्हें ही तो हम दोस्त

ये हमारी और आपकी दोस्ती, हम कितना ख्याल रखते हैं और आपका, और आप भी हमारा उतना ही ख्याल रखते हैं। आपके प्यारे प्यारे संदेश, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस और आपकी प्रतिक्रियाएं, कितना खूबसूरत है ना ये। आज के इस स्पेशल शो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे शुरू हुआ ये दोस्ती का नगमा दोस्तों, और क्या है इसका महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ। श्रोताओं, अक्सर लोग सोचते हैं कि फ्रेंडशिप डे तो बस आजकल का नया ट्रेंड है ना, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्ती का ये कारवां बहुत पुराना है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1930 में हॉलमार्क कार्ड्स के संस्थापक जॉयस हॉल ने सबसे पहले फ्रेंडशिप डे का आइडिया दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1958 में पराग्वे में डॉक्टर रामन आर्टेमियो बाचो ने वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड की नींव रखी। इसके बाद साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 30 जुलाई को आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस

तो श्रोताओं, आज बात उसी खूबसूरत रिश्ते की, क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस। जिंदगी हर पल खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना तो लिखा होता है तकदीर में, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक तो नहीं होती, है ना दोस्तों। अब देखिए

और मज़ेदार बात ये है श्रोताओं कि भारत और कई अन्य देशों में इसे अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से, यानी आज हम मना रहे हैं। वैसे इतिहास तो अपनी जगह है, पर हमारे भारतीय वेदों और शास्त्रों में तो दोस्ती की मिसाल सदियों पुरानी है। आप समझ ही गए होंगे ना दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिषे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्य तिष्ठति स बांधव। अर्थात जो इंसान खुशी में, दुख में, अकाल के समय में, संकट में और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र है।

तो दोस्तों, मौका भी है, दस्तूर भी है और मौसम तो बन ही गया है दोस्ती वाला। तो आपको याद दिला दें कि कृष्ण सुदामा की जोड़ी हो या राम सुग्रीव का साथ, इतिहास गवाह है कि एक सच्चा दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होता है।

श्रोताओं, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर कोई तनाव यानी स्ट्रेस से जूझ रहा है, वहाँ एक दोस्त ही होता है जिसके सामने हम बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह पाते हैं। वो देर रात तक बातें करना, वो बिना वजह हंसना, और मैं हूँ ना तो टेंशन मत ले ये कहना। ये बातें किसी थेरेपी से कम नहीं होती। एक सच्चा दोस्त आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को भी आसानी से पढ़ लेता है। और अब जरा सोचिए कि इस रिश्ते का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है श्रोताओं, ये समाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है। दोस्ती हमें सिखाती है समानता, दोस्ती हमें सिखाती है निस्वार्थ प्रेम, और दोस्ती हमें सिखाती है स्वीकार्यता यानी एक्सेप्ट करना। तुम जैसे हो हमारे हो।

दोस्ती का रिश्ता बारिश की बूंदों की तरह होता है जो चुपचाप जिंदगी की धूल धो देता है। सच्चा दोस्त वही है दोस्तों जो बिना कहे दिल की बात समझ लेता है। आज के डिजिटल युग में मित्र बनाना बहुत आसान है, लेकिन सच्ची मित्रता निभाना उतना ही कठिन है। एक संदेश भेज देना आसान है, पर किसी की परेशानी में उसके पास पहुंच जाना असली दोस्ती होती है। मित्रता केवल साथ हंसने का नाम नहीं है श्रोताओं, बल्कि कठिन राहों में किसी का हाथ थाम लेने का नाम है। आज जब हम किसी मित्र की सफलता पर दिल से खुश होते हैं, उसकी असफलता में उसे संभालते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़े रहते हैं ना, तभी मित्रता अपने वास्तविक अर्थ को प्राप्त करती है। दोस्त किताबों की तरह होने चाहिए, कम हो लेकिन बेहतरीन हो। हाय,

और दोस्तों दोस्ती की बात चली है और हमारी एक नियमित श्रोता है नीरा त्रिपाठी जी, इनका संदेश हम ना पढ़ें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने भेजा है बड़े ही प्यार से, आइए आपको भी बताते हैं क्या भेजा है इन्होंने। कहती हैं, मित्रता इस तरह का शब्द है जो जीवन की अनमोल धरोहर है। सच्ची मित्रता ही प्रेम विश्वास पर टिकी रहती है, निस्वार्थ होती है। मित्र हमारा साथी, हमारा हितैषी भी होता है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ होता है। मित्र हमारे आन बान शान हैं, उन पर हमें बहुत अभिमान है। सच्चा साथी अच्छी राज पर लेकर जाकर हमको अपनी सही दिशा भी दिखाता है। दोस्ती का रिश्ता अनमोल होता है, दोस्त दिल के सबसे करीब होता है। सच्चा दोस्त मिलना आसान नहीं होता, मिल जाए अगर तो वो जीवन भर साथ देता है, और ऐसे दोस्त की हमें कद्र जरूर करनी चाहिए। जी हाँ नीरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। साथी लिखती हैं, दोस्ती वो अनमोल रिश्ता है जो विश्वास और अपनापन भी सिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने नीरा जी, हम आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं।

तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि आज बहुत अच्छा मौका है। आज के इस खास दिन पर अपने उन सभी यारों को फ़ोन में लाइए जिनसे शायद लंबे समय से बात नहीं हुई है। एक प्यारा सा मैसेज भेजिए या बस मिलकर गले लगा लीजिए। पुराने गिले शिकवे भूल जाइए, क्योंकि दोस्ती बार बार नहीं मिलती। और चलते चलते आप सभी के लिए ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। न गाड़ी, न बंगला, न कोई पहचान चाहिए मुझे तो।

बस दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, बिछड़ जाए भी तो यादों का कारवां साथ रहे। हर जन्म में मुझे यही यारों का हाथ चाहिए। आप सभी को हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपा शीतल होए। यदि हम अपने व्यवहार में मधुरता, विश्वास और संवेदनशीलता बनाए रखें तो हर रिश्ता मित्रता की मिठास से भर सकता है। तो सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मित्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में ऐसे मित्र सदैव बने रहें जो हर मौसम में आपका साथ निभाए। और मैं यानी आज की आपके कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे आपसे चाहूंगी अनुमति। कल फिर मिलेंगे नमस्कार प्रयागराज के एक और विशेष अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं, आपका इंतजार खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु।

0: खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुनी आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का के गाने और बॉबी ऋषि की लव स्टोरी फिल्म का गाना। ये इन दोनों ही फिल्म के गाने अभी आप सुने और अब हम आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर फिल्म का गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा, सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव संसद के सामने रखा गया। इस पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी, जिसने लगभग 10 राज्यों में विभिन्न पक्षों से मिलकर के उनकी राय जानने की कोशिश की, कितना ये देश के लिए सही है, कितनी इसमें चुनौतियां हैं, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया और जल्द ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में रखेगी। इस कमेटी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा किया और लखनऊ में 3 दिनों तक लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और तमाम पक्षों के साथ बातचीत की। किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे संभव हो सकेगी और क्या वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इस महत्वाकांक्षी योजना के पक्ष में है, इस पर बातचीत करने के लिए जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: किस प्रकार आप इसको देखते हैं कि क्या देश को वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव जैसी किसी चीज की जरूरत भी है?
4: वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन जब संविधान लागू हुआ तो पहला इलेक्शन जो हुआ था 1952 में, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही था क्योंकि राज्यों में भी चुनाव हुए और संघ के लिए भी चुनाव हुआ। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कुछ विधानसभाओं ने बहुमत खोया मुख्यमंत्रियों ने, और देश में भी संसद का भी समय पीछे आगे हुआ और विधानसभाओं का भी समय पीछे आगे हो गया। ये बात समझने की है कि उस समय देश की आबादी लगभग 37 से 38 करोड़ थी और आज देश की आबादी लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो अत्यधिक व्यस्त हो गई है, बहुत सारे नए मंत्रालयों का गठन हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन का लक्ष्य ये है कि कार्यपालिका को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त समय मिले। अभी क्या होता है कि कार्यपालिका पर जो लोग हमारे देश में आसीन होते हैं, तो जो हमारी एक तरह से कह लीजिए कि संविधान की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद हो जाता है और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्रियों का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष पर्यंत या 5 वर्ष के शासन काल में अन्य राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, तो इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्यों में लगातार कहीं न कहीं चुनाव और चुनाव प्रचार के लिए कार्यपालिका को अपने व्यस्ततम क्षणों से समय निकाल करके प्रचार के लिए जाना पड़ता है और मुख्यमंत्रियों को भी अपने अपने दलों के लिए अन्य सभी राज्यों में आवागमन करना पड़ता है। इससे देश की जो विकास की योजनाएं हैं, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जो चर्चा का समय है और देश की योजनाओं को जितना गंभीर समय दिया जाना चाहिए वह संभव नहीं होता। तो कार्य

0: की दृष्टि से ये देखा जाता है कि जो कार्यपालिका है उसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए नई योजनाओं पर विचार करने के लिए, राष्ट्रोपयोगी योजनाओं को लाने के लिए और जो योजनाएं नहीं ठीक हैं उनको छोड़ने के लिए। इसके लिए गंभीर विचार विमर्श के लिए समय की आवश्यकता होती। तो अब जब लोकतंत्र का आकार इतना बड़ा हो चुका है तो उस स्थिति में देश के सामने कार्यपालिका का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का निर्वहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है तो उस लिहाज से भी हमारा दुनिया के अन्य देशों से भी एक आर्थिक प्रतियोगिता जैसी स्थिति बनी रहती है। तो देश को संभालने के लिए कार्यपालिका को पर्याप्त समय मिले और एक विशेष समय खंड में ही संघ और राज्यों का चुनाव हो जाए तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का खर्च भी बचता है और कार्यपालिकाओं को कार्य करने का समय भी मिलता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है और इसको होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, आपका ये मानना है कि एक साथ ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने इस संसदीय समिति ने इस बार पहली बार जो है वो मीडिया से भी एक पक्ष मानते हुए सुझाव लिए, तो जो इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं सांसद पीपी चौधरी, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि भी मीडिया जो है वो चूंकि एक बड़ा रोल प्ले करती है तो हम उससे भी विचार लेते हैं। एक जो प्रमुख विचार उसमें सामने आया, बल्कि यूं कहें कि सबने इस बात को लेकर के रजामंदी दिखाई कि आचार संहिता लगने की वजह से विकास की गति बाधित होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये था कि आखिर इसे किस तरीके से देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी राज्य में जल्दी सरकार गिर जाती है तो फिर एक जर्मन मॉडल की जिसमें चर्चा होती है कि जिसमें मौजूदा जो नेता होते हैं उनको हटाने से पहले नया नेता चुना जाता है सरकार गिरने के बाद, और जापानी मॉडल भी होता है, इस तरीके से कुछ मॉडलों की भी चर्चा हुई। ये एक बड़ी चुनौती निकल करके सामने आई, ये पूरी तरीके से सुझाव लेकर के भविष्य में कब लागू किया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पर जनता की राय जानी जा रही। तो अगर सरकारें बीच में गिरती हैं तो आपकी नजर में ये किस तरीके से इस मॉडल में काम आ पाएगा और कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक किया जा सकेगा?
0: देखिए, भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी का
1: जी
0: एक दृष्टिकोण आया था। वो समिति के अध्यक्ष थे तो उन्होंने ये संस्तुति दिया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा में किसी विधायक का पद रिक्त हो जाता है तो जो उपचुनाव होता है वो बची हुई विधानसभा के लिए ही होता है।
1: जी
0: तो जो विधायक चुना जाएगा वो केवल शेष विधानसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। अगर यही सिद्धांत पूरी विधानसभा पर लागू किया जाए, जैसे अभी बहुत कम ऐसी विधानसभाएं हैं जो मध्यावधि चुनाव के लिए जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में आपस में समझौता हो जाता है, बहुमत निर्मित हो जाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाता है तो विधानसभाएं चलती रहती हैं, तो उनको नेशनल डेट पर पहुंचना होगा। तो उस स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि दो ही एक विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं जो कभी को मध्यावधि के लिए जावें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये हो गई कि मान लीजिए कि संसद है और संसद में कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो शेष बचे हुए अवधि के लिए ही चुनाव किया जा सकता है। उसके बाद जो नेशनल डेट होगी उस पर चुनावों में सबको जाना होगा। तो ऐसा करने से मेरा मानना है कि 90% से अधिक एक राष्ट्र एक चुनाव की जो कल्पना है वो साकार हो जाएगी और यह व्यवहार में लाने योग्य संस्तुति है।
1: जी
0: अगर हम इस पर भी काम कर लें तो मची हुई अवधि के लिए ही जो नेशनल डेट्स होगा, टाइम टेबल फिक्स होगा,
1: जी
0: उस टाइम फ्रेम पर पहुंचने के लिए सबको जाना है और बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो शेष समय अवधि के लिए ही चुनाव किया जाएगा।
1: बिल्कुल। और ये जो 129वां संशोधन है संविधान का, इसको लेकर के जो समिति के सामने विचार आए उनमें एक प्रमुख चुनौती या आपत्ति जिसे कहा जाए वो छोटे दलों को लेकर के है और पूरे देश भर में एक समान राजनीतिक मुद्दों और भावनाओं को लेकर के है, कि जिसमें ये माना जा रहा है कि अगर बंगाल का कोई विषय है जो राज्य का विषय है वहां का प्रमुख मुद्दा है, और उत्तराखंड का कोई अलग मुद्दा है, गुजरात का अलग मुद्दा है, ये सभी प्रकार के मुद्दे एक किसी राष्ट्रीय मुद्दे के सामने फीके न पड़ जाएं, और दूसरी बात कि जो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास धन बल है वो किसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को हाईजैक न कर लें, इस खतरे को कितना जायज मानते हैं आप?
0: देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि जब हम विधानसभा का चुनाव करते हैं तो उसमें विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, और हमारी वही जनता लोकसभा के लिए भी चुनाव करती है। आजकल अलग अलग समय में करती है और वन नेशन वन इलेक्शन में एक समय में करेगी। तो मान लीजिए कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर विधानसभाओं के चुनाव हो, और चाहे वो राष्ट्रीय संसद के लिए चुनाव हो, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं और उन मुद्दों में जो हमारी जनता होती है वो निरशिर विवेक पूर्वक तीनों स्तरों पर आज भी मतदान करती है और कल भी मतदान करेगी। तो उस स्थिति में जो ये तर्क है कि छोटे दलों के अस्तित्व का प्रश्न है, तो विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उसी समय विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। तो आज भी हम देखते हैं कि प्रायः विधानसभा के जो मुद्दे हैं लोग विधानसभा के लक्ष्य को रख करके चुनाव करते हैं, संघ की बात होती है तो संसद को लक्ष्य करके चुनाव करते हैं।

0: और अगर जो है पंचायती राज व्यवस्था है तो नगर निकाय हुए और ग्रामीण क्षेत्र हुए, इनके लिए चुनाव होता है तो लोकल क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को ज्यादा प्रातिनिधिक बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए कि जो जनता है आज भी तीनों स्तरों पर अलग अलग वही जनता चुनाव करती है, केवल
1: जी
0: समय खंड एक हो जाएगा। तो समय खंड एक हो जाने से क्या होगा कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा, नीतियां बनेंगी, नीति निर्माताओं को समय मिलेगा, नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होगी, जो प्रॉमिजेस किए जाते हैं चुनाव के घोषणा पत्रों में उन प्रॉमिजेस पर भी डिस्कशन होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या प्रॉमिस किया और क्या डिलीवर किया। और विशेष रूप से अब जबकि योजना आयोग की व्यवस्था खत्म होकर के नीति आयोग आ गई है, तो किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संसद को भी समय मिलेगा कि इस पर विचार करे, और विधानसभाओं को भी समय मिलेगा कि उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकरण में क्या किया।
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति में ये एक व्यापक सुधार होगा, और यह सुधार जो है देश के लोकतंत्र के हित में होगा, क्योंकि जब चुनावों की कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो है जनता को ही बियर करना पड़ता है प्रकारांतर में,
1: जी
0: और जनता को भी ये अवसर मिलेगा कि जो चुनाव का समय है उस समय में कर ले, और तो चरणबद्ध तरीके से होगा, उसकी योजना होगी, और पूरा देश जो है नए परिवर्तन के लिए, नए जनादेश के लिए हर बार 5 वर्ष पे तैयार होगा।
1: बिल्कुल। और इस तरीके से जो विकसित भारत को लेकर के एक परिकल्पना
0: जी
1: रहती है
0: जी
1: उसमें बहुत
0: जी
1: बड़ा सहयोग रहेगा इस पूरी प्रक्रिया के
0: बिल्कुल
1: आसान होने से और लाखों करोड़ों के खर्च की बचत होने से। ब्रजेश जी,
0: जी
1: आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: समय नादाब उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। प्रोग्राम के आगाज़ में आप समात फरमाएंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका एक मकाला उर्दू मसनवियों में असातीरी किरदार। और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब अब्दुस्सलाम सलाम फैज़ी। सामईन, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस हवाले से समात फरमाइए एक मख्तसर बातचीत। माँ का दूध है अनमोल। खालिक कायनात ने अपने बंदों को हजारहा इनामात खसूसी से नवाजा है, उन्हीं में एक ख़ास तोहफा माँ है। माँ और एक बच्चे की पैदाइश के अमल में माँ के दर्द और उसके मोहब्बत का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बच्चे की पैदाइश के बाद नवजायदा बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ माँ का दूध होता है। माँ का दूध पिलाने का आलमी हफ्ता यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चों की सेहत और माँ के दूध की अहमियत के बारे में आवाम को बेदार करना है। पैदाइश के बाद इब्तदाई 6 माह तक माँ का दूध शीरखार बच्चे के लिए गजाइयत का बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। ये मुकम्मल गजाइयत फराहम करता है और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बचाव में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये दिमाग, हड्डियों और जिस्मानी नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। माँ का दूध पिलाने का आलमी हफ्ता मनाने का बुनियादी मकसद बच्चों की सेहत के लिए माँ के दूध की अहमियत को उजागर करना है, माओं में शऊर बेदार करना है और पैदाइश के पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की तरगीब देना है। इस हवाले से हमने बातचीत की डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता से, तो उन्होंने हमें बताया।
2: डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए माँ का दूध कितना लाभकारी होता है?
3: नवजात शिशु के लिए माँ का दूध बहुत लाभकारी होता है और हर माँ को ये सजेशन दिया जाता है कि उन्हें अपना ही दूध पिलाएं। उसमें शुरू के दिनों में कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन निकलता है जो बच्चों के दिमाग, ब्रेन और बॉडी दोनों के डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। और ये जो गलत भ्रांति है कि वो जो पतला पदार्थ है उसको कभी कभी लोग फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, निकाल के फेंकना नहीं चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। ये हर तरह से लाभ करे।
2: बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 3 दिन जो माँ का दूध होता है उसके लिए बताया जाता है कि वो बच्चों के शरीर के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, उनके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है।
3: हाँ, यस, ये सही बात भी है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल में जो प्रोटीन निकलता है उससे उनका मानसिक और शारीरिक दोनों डेवलपमेंट

0: अच्छी तरह से होता है। तो जो लोग इसके लिए जागरूक भी हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और पीडियाट्रिशियन, हम लोग जो ये 1 से 7 जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, उसका पर्पस भी यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग सुने इस बात को। और वो दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुरू के 3 दिन जो कोलोस्ट्रम निकलता है दूध में, वो दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
1: माँ का दूध है अनमोल। सामाइन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हवाले से अभी आप ये गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे, और आइए अब रुख करते हैं मकाले की जानिब। मसनवी की इब्तदा ईरान में हुई और यह ख़ास ईरान की परवरदा है। मसनवी फारसी शायरी के तवसुस से हिंदुस्तान में आई। उर्दू में सबसे पहले दक्कन में मसनविया लिखी गईं। उर्दू अदब के मुताले के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उर्दू के मुतअद्दिद शोरा ने सिन्फ़ मसनवी में तबाह आजमाई की है, लेकिन मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान को 2 सदी से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद उर्दू में बेहतरीन मसनवी तसव्वुर किया जाता है। असातीर की दुनिया भी फिक्शन की दुनिया की तरह हैरतनाक, सेहरंगेज, दिलकश और वसी और पेचीदा है। तमाम असातीरी किरदार की कोई ना कोई कहानी होती है या कहानियों में ये मखसूस किरदार की हैसियत रखते हैं। यह असातीर या देवमालाई अपने इलाके, मजाहिब और तहजीब व तमद्दुन के लोगों की इल्म, अकीदे, फिक्र और रुझान के गम्माज होती हैं। आइए इसी हवाले से सुनते हैं जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका यह मकाला, उर्दू मसनवियों में असातीरी किरदार।
2: मसनवी अरबी लफ्ज़ है, इसके माना दो किया गया है। इसका ये नाम अहले ईरान ने दिया है। इस्तिलाही माना में मसनवी उस नज्म को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों और तमाम अशार एक ही बहर में। मौलाना हाली ने मुकदमे शेर शायरी में मसनवी के मुतल्लिक लिखा है कि उर्दू शायरी की तमाम असनाफ में सबसे ज्यादा कारामद यही सिन्फ है। अल्लामा शिबली ने भी शेरुल अजम में तकरीबन यही बात कही है कि तमाम अनवाए शायरी की बनिस्बत मसनवी ज्यादा वसी और हमागीर है। इसमें हर किस्म के मजामीन व मौजूआत बांधे जा सकते हैं। तनव्वु मजामीन और उसकी वसअत व हमागीरी के मुतल्लिक अली जव्वाज जोदी ने लिखा है कि मसनवी आशिकाना भी होती है और आरिफाना भी, रिझाई भी है और मदहिया भी, समाज की अक्कास भी है और समाज की नाकिद भी, मजहबी भी है और मुलहदाना भी, रिवायत परस्त भी है और रिवायत शिकन भी। इसमें हर मजहब और हर ख्याल की नुमाइंदगी मिलेगी। इसमें दूसरी जुबानों के खजाने और मुख्तलिफ असालीब बयान भी मिलेंगे। इसमें बच्चों का अदब भी मिलेगा और औरतों का भी। ये बजाय खुद एक अंजुमन है और एक आलम ख्याल। दक्कन और शिमाली हिंद में इब्तदाही से उर्दू में मसनवी निगारी का रुझान मिलता है। मीरा जी की शहादतुल हकीकत और खुशनामा, निदामी की पद्म राव कुदम, मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी वगैरह उसी अहद की यादगार हैं। मसनवी का आगाज गालिबन मजहबी हैसियत से हुआ। मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी रहमतुल्लाह अलैह शेरुल हिंद में लिखते हैं कि 1018 हिजरी में कुतुब शाह ने एक नातिया मसनवी लिखी। उसके बाद रुस्तमी ने कुतुब शाह की बेटी खदीजा की फरमाइश पर खावर खाना लिखी, जिसमें हजरत अली रज़ील्लाहु अन्हो के कारनामों पर मुश्तमिल 80,000 अशार थे। उसी जमाने में आशिकाना मसनवियों की इब्तदा हुई और नुसरती ने गुलशन इश्क लिखी। शाहनामा के जवाब में अली नामा लिखने का सेहरा भी उन्हीं के सर है। मुख्तसर ये कि मसनवियों का जखीरा इतना वसी और मुतनव्वे है कि इस पर गुफ्तगू के लिए चंद सफहात नाकाफी हैं। इस मौजू पर मुतद्दिद वकी किताबें मंजरे आम पर आ चुकी हैं। यहाँ मसनवी के असातीरी किरदार पर मुख्तसरन रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। हमारा मुल्क कदीम जमाने से गंगा जमुनी तहजीब का अलमबरदार रहा है। मुश्तरक कल्चर हमारे मुल्क की असल पहचान है। हमारे दाएं मस्जिद का मीनार और बाएं मंदिर का सुनहरा गुम्बद नजर आता है। एक तरफ अल्लाह अकबर तो दूसरी तरफ हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज सुनाई देती है, मगर दोनों में किसी को कोई आवाज नागवार नहीं लगती। हिंदुस्तान में असातीरी रिवायात का चलन एक मुद्दत से रहा है और फी जमाना तो इसकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। और अब तो ये असातीरी किस्से हमारे भारतीय कल्चर का आईना और हिस्सा तसव्वुर किए जा रहे हैं। मज़कूरा असातीर जैसे देवी देवता, देव के किस्से और परियों की दास्तानें अपने नाम और अपनी रिवायात के सबब पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि मथनवी निगारों ने अपनी मसनवियों में बिलुमूम हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी और शहरों और उनके तहजीबी अहवाल को नज्म करते वक्त इन असातीरी रिवायात को खास अहमियत दी है। इसके पस पर्दा उनका मकसद अगर ये कहा जाए कि कारीन की तफरीह तबा के साथ साथ इबरत व मौजत के पहलू को

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं शिवानी केसरवानी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
4: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
3: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शिवानी के शर्वानी के स्वर में भजन। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12 अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया है। राज्य भर में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, ईंट भट्टे, मैकेनिक की दुकान, निर्माण स्थल और चाय की दुकानों पर काम कर रहे बच्चों में 5,892 लड़के और 415 लड़कियां शामिल थीं। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। इन बच्चों में 5,737 को उनके परिवारों से मिला दिया गया है, जबकि 570 को बाल देखभाल केंद्रों में भेज दिया गया है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक दिन में

सात स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उधर ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमेरिका के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रारूप में अमूल्य योगदान दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज की कलाकार हैं संगीता मिश्रा और त्रिभुवन लाल यादव और साथी श्रीकांत वैश्य के स्वर में भी आप सुनेंगे लोकगीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक मात्र में अभी आपने सुने संगीता मिश्रा के स्वर में देवी गीत और कहरवा, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं त्रिभुवन नाथ यादव और साथियों के स्वर में पचरा।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में अभी आपने सुने संगीता मिश्रा और त्रिभुवन लाल यादव और साथियों के स्वर में लोक गीत। फिर आपको सुनवा रहे हैं त्रिभुवन लाल यादव और साथियों के स्वर में दादरा। इसके बाद आप सुनेंगे श्रीकांत वैश्य के स्वर में कजरी।

लोकगीतों में कार्यक्रम लोकमाधुरी में कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आप सुन रहे हैं श्री श्रीकांत वैश्य के सुर में लोकगीत।

संगीता मिश्रा, त्रिभुवननाथ यादव और साथियों और श्री श्रीकांत वैश्य के स्वर में अभी आपने सुने लोकगीत। कार्यक्रम था लोक माधुरी।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सावन का महीना पवन करे सो।
1: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और मैं हूँ आपके कार्यक्रम होस्ट मोना पांडे। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सावन ये नाम सुनते ही मन में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, भीगी मिट्टी की सूंधी खुशबू महक उठती है और आंखों के सामने झूमते पेड़, बरसते बादल और खिलखिलाते प्रकृति की तस्वीर उभर आती है। भारतीय संस्कृति में सावन केवल एक ऋतु नहीं है श्रोताओं, बल्कि कि ये प्रेम, उमंग, आस्था और नवजीवन का उत्सव है। और जब इस मौसम में दोस्ती की मिठास निकल जाए तो मौसम और भी सुहाना हो जाता है। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ऐसे ही सुंदर गीत जिनमें कहीं बारिश की रिमझिम है तो कहीं दोस्ती की गर्माहट और कहीं दिल की मासूम धड़कन। तो ये करते हैं शुरुआत।

देव श्रोताओं, इस गीत की सादगी और मिठास हर बार मन को हरियाली से भर देती है। बारिश का मौसम केवल प्रकृति को नहीं इंसान के मन को भी नया रंग देता है। शायद इसीलिए ना दिल भी इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही आवारा हो जाता है।

श्रोता, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। किसी ने सच ही कहा है कि दिल का कोई ठिकाना नहीं और बरसात का भी नहीं। कभी धूप, कभी छांव, कभी फुहार और कभी मूसलाधार बारिश, यानी बदलती रंगों को सुरों में सजाता। आइए सुनते हैं अगला गाना।

दोस्तों, फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मिलन सोलमा साल और प्यासा सावन फिल्म के गाने आपने सुने, और अब हम जो गाना आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म शोले से। बादलों की तरह कुछ रिश्ते भी जीवन में बरसते हैं दोस्तों। उनमें सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है दोस्ती का। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो या राम और निषाद राज का अपनापन, भारतीय परंपरा में मित्रता हमेशा निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक रही है। कहा भी गया है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव, अर्थात जो सुख दुख संकट और कठिन समय में साथ निभाए वही सच्चा मित्र है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना दोस्ती पर।

क्यों श्रोताओं, लगा ना ये गीत नहीं केवल एक दोस्ती की शपथ है। एक शायर ने कहा है, दोस्ती वो दौलत है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है। बारिश की बूंदें और सच्चे दोस्त दोनों बड़ी किस्मत से मिलते हैं। और अब फिर लौटते हैं सावन की ओर, जब बादल छा जाएं, हवा में ठंडक घुल जाए और मन गुनगुनाने लगे तो यार

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत अपनी दोस्त मोना पांडे के साथ। सावन की असली पहचान है उसकी रिमझिम फुहार, खिड़की पर गिरती बूंदें, हाथों में चाय का प्याला और मनपसंद गीत। ऐसे ही मौसम को बेहद खूबसूरती से सजा रहा है हमारा ये गीत।

श्रोताओं, दोस्ती केवल हंसी का नाम नहीं बल्कि कठिन समय में हिम्मत देने का नाम भी है। सच्चा मित्र तो वही है जो आपकी सफलता पर सबसे ज्यादा खुश हो और आपके दुख में सबसे ज्यादा उदास हो।

मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जय श्रोताओं, पुराने गीतों की यही तो खूबी है कि वो सीधे दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंच जाते हैं। बारिश की पहली बार जब चेहरे पर छूती है तो बरसों पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है। आइए उसी एहसास को

ये थी श्रोताओं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सावन हमें सिखाता है कि सूखी धरती भी फिर से मुस्कुरा सकती है, और दोस्ती हमें सिखाती है कि जीवन की कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं यदि साथ में एक सच्चा दोस्त हो। आज के कार्यक्रम का समापन रहीम के इस दोहे के साथ, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बारिश की बूंदें मिट्टी को महकाती हैं, और श्रोताओं सच्चे दोस्त जिंदगी को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में सावन की हरियाली बनी रहे, रिश्तों में अपनापन बना रहे, और दोस्ती की खुशबू कभी कम ना हो।

0: मीना पांडे लेती हूँ आपसे इजाजत, जुड़े रहिए आकाशवाणी प्रयागराज से।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब नन्हे मुन्ने सुने अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: अरे वाह दीदी, आपके हाथ में ये ब्रेसलेट बड़ा ही प्यारा लग रहा है। देखें तो कितना सुंदर है, दिखाइए जरा।
2: ये देखिए दीदी।
0: हाँ।
2: क्या भूल गई, ये ब्रेसलेट नहीं, ये मेरा बहुत ही प्यारा अजीज तोहफा है फ्रेंडशिप डे का।
0: अच्छा।
2: जो कल ही मेरी बेटी ने मेरे लिए भेजा है।
0: अच्छा।
2: और मैं इसे पाकर इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और मैंने आज ही इसे निकाल कर पहन लिया।
0: बिल्कुल खुश होने वाली बात ही है।
2: आज है मित्रता दिवस।
0: बिल्कुल।
2: और मैं और मेरी बेटी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। अपने हर सुख दुख, हर दिन भर की बातों को सबको शेयर करते हैं। बट जब मैं कहीं किसी काम में फंस जाती हूँ तो वो मेरी हर मुश्किल झट से आसान कर देती है। इसीलिए तो वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और अब लाइए अपना हाथ आगे करिए जरा सा।
0: ये लीजिए,
2: ये लीजिए। आपके लिए मैं भी लेकर आई हूँ एक फ्रेंडशिप बैंड, क्योंकि
0: अच्छा?
2: आप भी तो हमारी प्यारी प्यारी दीदी हैं, जो हर काम मेरा आसान कर देती हैं और हर बात को गहराई से समझाती भी हैं।
0: अरे वाह रचना दीदी, आपने तो सरप्राइज दे दिया है। और देखिए इस सरप्राइज के लिए आपको ढेर सारा थैंक यू और बहुत प्यार। और ये आपका जो गिफ्ट है ना, ये बहुत अच्छा है मुझे लगा। तो भाई मुझे तो आज बिल्कुल ध्यान से ही मैं ही नहीं रहा, ध्यान से उतर गया। तो कोई बात नहीं, ये चंद लाइनें आपके लिए और हमारे प्यारे से साथियों के लिए। दोस्ती कोई शब्द नहीं, एहसास बन जाती है। दोस्ती कोई शब्द नहीं, एहसास बन जाती है। दुआ है ये हमारा, सूनी सी राहों में भी एक आस बन जाती है। दोस्ती कोई शब्द नहीं, एहसास बन जाती है, सूनी सी राहों में भी एक आस बन जाती है। दुआ है ये हमारा रिश्ता यूं ही महकता रहे, हर खुशी हो या गम हमेशा यूं ही मुस्कुराता और खिलखिलाता रहे। ये खास लाइन आपके लिए, तुम जैसा अजीज दोस्त मिला मुझे, बस यही खजाना उम्र भर साथ चलता रहे।
2: थैंक यू प्यारी दीदी। और सभी साथियों को और प्यारे प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से भी मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो बच्चों आज सभी को मित्रता दिवस की तो हमने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे दी, लेकिन आपको एक बात और भी बताने वाले हम कि एक ऐसी दौलत के बारे में जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना आग जला सकती है और ना ही समय कम कर सकता है। वो क्या है रचना दीदी, गैस कीजिए।
2: अरे दीदी ऐसी दौलत कौन सी हो सकती है हमारी?
0: भाई वो ऐसी दौलत है सच्ची मित्रता, जो हमारी पूंजी है ना। तो बच्चों सोचो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हों लेकिन खेलने वाला कोई दोस्त ना हो, तो क्या उन खिलौनों में मजा आएगा?
2: बिल्कुल नहीं। खुशी तब दोगुनी हो जाती है जब उसे किसी अपने दोस्तों के साथ दीदी बांटा जाए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: इसलिए कहा जाता है सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है।
0: बिल्कुल।
2: और दीदी मित्रता क्या है, आज हम अपने बच्चों को ये बात बताएंगे।
0: बिल्कुल।
2: है ना, क्या साथ में पढ़ने वाला हर बच्चा हमारा मित्र होता है?
0: भाई नहीं रचना दीदी, मित्र वो नहीं जो सिर्फ हमारे साथ बैठे, बल्कि मित्र वो है जो हमारी खुशी में खुश हो, हमारी गलती पर प्यार से हमें समझाए, कठिन समय में हमारा साथ

0: ना छोड़े और हमें सही रास्ता दिखाए, ऐसा मित्र होना चाहिए।
1: यानी सच्चा मित्र हमारी तारीफ ही नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने में हमें सुधारता भी है। और दीदी एक छोटी सी वास्तविक घटना है जो आप बता दीजिए।
0: भाई बच्चों देखिए, एक स्कूल में दो दोस्त थे, है ना, आरओ और विवान। आपके भी दोस्त होंगे स्कूल में, बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना। एक दिन परीक्षा के समय यानी एग्जाम चल रहा था तो आरओ अपना पेन घर भूल गया। वो बहुत परेशान हो रहा था, बहुत ही रोने लगा। विवान के पास केवल दो पेन थे, उसने भी बिना सोचे अपना एक पेन आरओ को दे दिया। वो रो रहा था, परेशान था, इसलिए दे दिया। अब भाई एग्जाम खत्म होने के बाद आरओ ने कहा, अगर तुम मदद नहीं करते तो शायद मैं पेपर ही नहीं लिख पाता। तो विवान मुस्कुराकर बोला, दोस्त वही होता है, वही तो होता है जो जरूरत के समय काम आए। तो कितनी अच्छी बात उस बच्चे ने कही है ना। तो ऐसी मित्रता होनी चाहिए,
1: ऐसी मित्रता होने से। देखा बच्चों, मित्रता का मतलब केवल साथ खेलना नहीं होता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और देखो बच्चों, एक पौराणिक कथा में भी हमारे यही सीख हमको पहले से ही हमें संस्कार में यही सिखाया गया है, बताया गया है कि हमारी भारतीय परंपरा में सच्ची मित्रता के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। सबसे उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का है।
0: बिल्कुल।
1: यानी सुदामा बहुत गरीब थे जबकि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। वहाँ बाद में जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने पहुंचे तो कृष्ण भगवान ने उन्हें गले लगाया, उनके पैर धोए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, है ना। तो उन्होंने कभी ये नहीं दिखा कि अमीर गरीब का फर्क नहीं देखा कि सुदामा गरीब है, उन्होंने केवल अपनी मित्रता निभाई। तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दीदी?
0: भाई हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो केवल प्रेम, विश्वास और अपनापन देखती है, है ना। तो बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर फ्रेंडशिप कीजिए तो अच्छी बातों को सोचकर और उस बच्चे के अंदर जो चीज है, अगर कोई कमी है उसको भी दूर आप कीजिए और साथ में मिलकर
1: अच्छाई है
0: उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। और जानते हैं रचना दीदी और छोटे बच्चों, आप सब भी सुनिए कि एक और भी मैं बात बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण, जैसे महाभारत में कहा गया है ना कि महाभारत में भी मित्रता का एक प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है। जब आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, तो सीरियल जब आप देखे होंगे तो उसमें आपको मैं याद दिला देती हूँ, क्योंकि सीरियल देखने के बाद या पढ़ने के बाद आप सब भूल जाते हो। तो दीदी लोग यहाँ पर बैठी हैं आप सबको बताने के लिए।
1: इसीलिए हम लोग अच्छी बातें बता रहे हैं।
0: श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता भी देखिए श्री कृष्ण केवल अर्जुन के मित्र ही नहीं थे बल्कि उनके मार्गदर्शक भी थे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में घबरा गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें सही ज्ञान दिया और उनका आत्मविश्वास लौटाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो हमें सही रास्ता दिखाए, ना कि गलत काम में साथ दे। तो आज के समय में मित्रता ये जानना जरूरी है कि क्यों जरूरी है, हमें मित्रता क्यों करनी जरूरी है, हमें मित्र बनाना क्यों चाहिए, है ना।
1: दीदी, आज
0: तो आप बताइए दीदी।
1: आज का समय है ना, इतना मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है कि हमारे सैकड़ों ऑनलाइन दोस्त बन सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, दोस्तों की संख्या की गिनती नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उन कि चाहे एक दोस्त हो, दो दोस्त हो, उनके साथ सच्चेपन मायने रखता है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी सफलता पर ईर्ष्या नहीं खुशी मनाए, असफलता में आपका हौसला बढ़ाए और आपको गलत आदतों से बचाए। क्यों दीदी?
0: बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे हम सब की सच्ची वाली मित्रता है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: कि हम सब
1: जब थोड़ी देर पहले से तो मित्रता दिवस मना ही रहे हैं।
0: जैसे ही मिले इतनी खुशी हुई कि भैया हम सब साथ में मिले, तो ऐसी वाली मित्रता होनी चाहिए। कोई जरूरी
1: मिलो तो अपने पन से मिलो।
0: कोई जरूरी नहीं है कि रोज आपकी मुलाकात हो रही है या रोज आप खेलने के लिए साथ में आ रहे हो, है ना। ऐसी वाली मित्रता होनी चाहिए कि कहीं भी कोई आपका मित्र रहे, दूर रहे, पास रहे, आप हमेशा उसका साथ निभाने की कोशिश कीजिए, उसकी गलतियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, जो उसकी अच्छाइयां हैं उसको अपनाने की कोशिश कीजिए, ऐसी वाली मित्रता कीजिए।
1: तो मित्र बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बहुत आसान बातें हैं दीदी। हमेशा सच बोले, अपने मित्र की मदद करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, झूठ और धोखा तो कभी
0: नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
1: और गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दो कहने में कभी संकोच ना करें, क्योंकि अगर किसी मित्र की सफलता होती है तो उससे जलन ना करें बल्कि दिन में खुशी रखें।
0: बिल्कुल।
1: तो सच्ची पूंजी क्यों भाई इसको कहते हैं दीदी?
0: भाई देखो रचना दीदी, अब ये है कि मित्रता सच्ची पूंजी इसलिए कहा गया है क्यों?

0: क्योंकि कम या ज्यादा हो सकता है पैसा, हमारे पास रुपए पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सच्चा जो मित्र होता है जीवन के की सबसे बड़ी वो ताकत है, जो पास में होने से ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की दौलत हमें मिल गई है।
1: ताकत बन गई
0: हाँ,
1: हमारी।
0: चाहे बीमारी हो, परेशानी हो, डर हो या खुशी हो, एक सच्चा मित्र ही हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि धन से घर भर सकता है, लेकिन सच्चे मित्र से जीवन
1: जीवन
0: भर
1: भर
0: सकता
1: सकता
0: है।
1: है। तो बच्चों, आपके लिए एक संदेश है, आज मित्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अच्छे मित्र बनेंगे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम किसी को अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। अगर हमारे क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा है या अगर वो कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, तो हम समय समय पर उसकी मदद करेंगे और हम प्रेम, सम्मान और विश्वास हमेशा सबके साथ मिलकर के मित्रता निभाएंगे। इसलिए दोनों मिलकर याद रखिए कि सच्चा मित्र भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर
0: दर
1: उपहार होता
0: उपहार होता
1: है
0: है,
1: और
0: बिल्कुल।
1: सच्ची मित्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो दीदी देखिए, खाली इंसान ही मित्र नहीं होते हैं,
0: हाँ,
1: पशु पक्षी या हम घर के आसपास जिन भी जानवरों को देखते हैं, पालते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: वो भी हमारा सच्चा
0: हमें
1: मित्र
0: नेचर बताती है, तो हम
1: बताता
0: को
1: है।
0: बहुत कुछ सीख
1: तो
0: जो
1: उससे भी हम बहुत
0: सीख
1: कुछ
0: लेते हैं
1: सीखते
0: नेचर
1: हैं,
0: से ही,
1: नेचर से
0: बिल्कुल।
1: भी सीखते हैं। तो क्यों ना बच्चों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए
0: क्यों
1: अब।
0: नहीं, नेकी और पूछ पूछ जल्दी से सुनवाइए।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: तो भाई देखो, अपने कार्यक्रम में हम फिर आ गए रचना दीदी,
3: वापस आ गए और हाँ, कितना सुंदर गीत सुनवाया, मजा आ गया ना हाँ, दीदी सुन देखो, करके कि हाँ, चल, हाथी चल, चल, चल चल मेरे हाथी मेरे साथ।
2: देखो वो भी एक दूसरे की हेल्प है ना।
3: और दीदी वो देखिए जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हाँ, साथ में बैठे हैं हाँ, ना, वो भी हम देख रहे थे काफी इंजॉय कर
2: हाँ,
3: रहे थे,
2: झूम रहे थे,
3: झूम रहे थे और हम लोग को तो मजा आ ही रहा हाँ, था। आज हम लोग भी बच्चे तो बन ही जाते हैं,
2: बिल्कुल बन जाते हैं भाई, बच्चों के बीच में बच्चे ही बन जाओ और अपना बचपन जी लो, बहुत अच्छी बात है ना। तो भाई जो हमारे बीच में ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे नए साथी जो आए हुए हैं, तो भाई इनसे रूबरू करवाओ ना।
3: हाँ दीदी, तो इन सबसे पहले हम हाँ? बात करते हैं, एक छोटी बच्ची है वो अपना नाम खुद ही बताएगी।
2: हाँ
4: मेरा नाम अवंतिका है।
3: अवंतिका है। आप कहाँ पढ़ती हैं अवंतिका?
4: मैं हॉरिटनेटी में पढ़ती हूँ।
3: अच्छा, और किस क्लास में?
4: मैं सेकेंड डी में पढ़ती हूँ।
3: अरे वाह। और देखिए दीदी, एक छोटी नन्ही बच्ची और बैठी है ना, लगता है हाँ, उनको सर्दी लग गई
2: हाँ,
3: इसीलिए उनको छींक आ गई जो है, क्योंकि मौसम ही कुछ हाँ, ऐसा चल रहा है,
2: ठंडा गर्म है ना, ठंडा गर्म चल रहा है बिल्कुल।
3: और इससे भी इसका नाम पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से सुनेंगे
2: हाँ, बातचीत करते हैं। फिर
3: नाम बताइए।
4: मेरा नाम शान्विता है।
2: शान्विता,
3: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
4: वनी।
3: वनी में। और किस स्कूल में पढ़ती हैं?
4: डीएवी पब्लिक स्कूल।
3: अरे अच्छा, वाह।
2: आप दोनों क्या है, दोस्त हैं कि सिस्टर्स हैं?
4: सिस्टर्स।
2: हाँ, अन्विता और शान्विता, बहुत अच्छा नाम है आप लोगों का भाई। किसने नाम रखा था आप लोगों का, मम्मी ने कि पापा ने, किसने रखा था?
4: मेरे तो पापा ने रखा था।
2: और आपकी?
4: मम्मी ने।
2: मम्मी ने रखा था भाई। दोनों का नाम बहुत
3: दोनों
2: ही प्यारा
3: का नाम
2: है।
3: बहुत प्यारा है।
2: तो सबसे पहले तो किससे बात की जाए?
3: इनसे जो है अवंतिका से पूछा जाए कि इन्हें हाँ, खाने में क्या क्या पसंद
2: ठीक
3: है?
2: ठीक है, तो अवंतिका आप बताइए कि आपको खाने में क्या
3: खाने में क्या क्या पसंद है, और आपका खेल मनपसंद कौन सा खेल खेलती है, क्या पसंद है, जल्दी से बताइए तो अपने दोस्तों को।
4: मुझे खाने में मटर पनीर अच्छा लगता।
2: अच्छा।

0: मटर पनीर, वाह।
1: तो मम्मी आपकी हर छुट्टी में संडे को यही खाना लगता है बनाती हैं। अच्छा ये बताइए, आज आप फ्रेंडशिप डे पे अपनी फ्रेंड के लिए कोई कार्ड वर्ड बनाएंगी जा करके? आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है?
2: अर्षिता।
0: अर्षिता, तो वो भी आपको फ्रेंड मानती है?
2: हाँ
0: मानती। कैसे, क्या करती है, क्या हेल्प करती है आपकी? वो
2: हर चीज मतलब करती है,
0: हर चीज में मदद करती है। जैसे पेन में पेंसिल है ना, कुछ भी ऐसा आप भूल गए या होमवर्क नहीं आपने किया या क्लास वर्क में प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प करती है?
2: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फ्रेंड है भाई, है ना। तो और साथ में खेलती है कि नहीं खेलती? आप लोगों में लड़ाई होती है अनविता, आपकी और आपकी जो फ्रेंड है, आप दोनों में लड़ाई होती है कि नहीं होती है?
2: बहुत थोड़ी थोड़ी।
0: बहुत थोड़ी थोड़ी, ये तो बहुत अच्छी वाली बात है कि बहुत थोड़ी थोड़ी होती है ना। हाँ पूछिए।
1: तो दीदी अब इनसे सुन लिया जाइए, कुछ तैयार करके आई हैं।
0: अच्छा तो चलिए भाई सुनाइए सुनाइए अनविता, आप सुनाइए क्या सुनाने जा रही हैं हमारी?
2: पोयम
0: सुनानी, सुनाइए।
2: हम नन्हे नन्हे विद्यार्थी देश का भविष्य कहलाते हैं, ज्ञान और मेहनत के बल पर आगे कदम बढ़ाते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हर पल आगे बढ़ते हैं, अपने अच्छे कर्मों से हम दुनिया में नाम करते हैं, सच्चाई का साथ निभाकर ईमानदारी अपनाते हैं, गुरुओं की सीख को मानकर जीवन सफल बनाते हैं।
1: वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए कितनी सारी सीख इसमें मिल गई इनकी कविता में।
0: बिल्कुल।
1: और आप बताइए आप क्या सुनाएंगी शानविता कविता?
3: तो जल्दी। सूरज निकला, धूप खिल गई, मम्मी मुझको भूख लग गई, चीची चीची चीची ची, कहाँ उड़ गई मम्मी जी, छोटी नन्नी चिड़िया हूँ, माँ तेरी गुड़िया हूँ, जल्दी से अब आ जाओ, खाना मुझे खिला जाओ, चुपके से सो जाऊंगी, चीची नहीं मचाऊंगी।
1: वाह, इनकी भी तो माँ और बच्चे का प्रेम कितना प्यारा दर्शाया गया है ना। बहुत सुंदर कविता सुनाई। तो दीदी जो है ये लोग कुछ कहानी भी सुनाएंगी, बट इसके बाद हम लोग सुन लेंगे। पहले हम लोग इनको कहानी सुनवा देते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कहानी का शीर्षक है समझदार टिंकू पिंकू, और ये जयश्री श्रीवास्तव दीदी की कहानी है।
0: चलिए सुनते हैं।
4: नमस्ते बच्चों, तुम्हें कहानी बहुत पसंद है ना? देखो मैं आज तुम्हारे लिए नई एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है समझदार टिंकू पिंकू। सुंदर वन में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की खुशी में गम में शामिल होते थे। उसी वन में एक चीना नाम का हिरन अपने परिवार के साथ रहता था। चीना की पत्नी थी, उसका नाम था मिनी। मिनी पढ़ी लिखी और समझदार थी, वो बड़े अच्छे से अपने परिवार को पालती थी। एक दिन एक शिकारी ने जंगल में एक जाल बिछाया, चीना दावत खा के आ रहा था, वो जाल में फंस गया बच्चों, और बहुत चिल्लाया बहुत रोया। जब तक उसकी आवाज़ दूसरे जानवर सुन पाते तब तक शिकारी चीना को लेकर चला गया। मिनी बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। सभी लोग उसके पास पहुँचे, मिनी को समझाते, मिनी धीरज रखो, देखो जो होना था वो हो चुका। मिनी की एक दोस्त थी, उसका नाम था रीमा। रीमा ने कहा, मिनी तुम इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम धीरज नहीं रख पा रही हो। उठो देखो अपने बच्चों को, देखो कितने परेशान हैं वो, तुम उठो उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनकी हिफाजत करो, उन्हें अच्छे से रखो। रीमा की बात बच्चों मिनी की समझ में आ गई। मिनी ने अपने बच्चों को देखा, उसे बड़ा दुख हुआ। इतने दिन तक उसने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था, बच्चे खाना ठीक से न खाने के कारण कमज़ोर हो गए थे। मिनी ने बच्चों को प्यार से अपने गले से लगा लिया, बच्चे रोने लगे। मीना ने अच्छा से उन्हें नाश्ता बनाया खिलाया, अब उसे समझाया कि मुझे इनको पढ़ाना चाहिए। मिनी अपने बच्चों को प्यार से पढ़ाने लगी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले एक खरगोश ने कहा, मैं क्या करूं भाभी, आप अपने बच्चों को तो पढ़ाती हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें समझ भी नहीं है, अगर आप अपने टिंकू पिंकू के साथ हमारे बच्चों को भी पढ़ाने लगेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिनी ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आप अपने बच्चों को भेज दीजिए, मैं उन्हें पढ़ा दिया करूँगी। मिनी जब पढ़ाने लगी तो सारे जानवरों

वो पता चला कि मिनी जो है बच्चों को पढ़ाती है। उन्होंने शेर के पास जाके कहा, राजा जी मिनी जब सारे बच्चों को पढ़ाती है तो आप एक स्कूल बच्चों के लिए यहाँ जंगल में खुलवा दीजिए। शेर ने मिनी को बुलवाया और कहा, मिनी सारे जानवरों की इच्छा है कि तुम सबके बच्चों को पढ़ाओ, क्या तुम ऐसा करोगी? हाँ हाँ मैं ज़रूर करूँगी, तो मैं जंगल में एक स्कूल खुलवा देता हूँ, वहाँ तुम सारे बच्चों को पढ़ाना। मिनी ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। बोलो बोलो क्या बात है? मैं चाहती हूँ जो विद्यालय खुले वह मेरे पति के नाम से खुले। सब ने कहा ठीक है ठीक है। बरगद के नीचे विद्यालय खोल दिया गया। उस विद्यालय का नाम रखा गया चीना शिक्षा केंद्र। मिनी वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगी। उस दिन जिस दिन प्रारंभ हुआ विद्यालय, उस दिन उद्घाटन समारोह में खूब रंगारंग कार्यक्रम हुए। कोयल ने मीठे स्वरों में सरस्वती वंदना की, मोर ने अपने दोस्तों के साथ सुंदर नाच दिखाया, बंदर ने उछल कूद मचाकर सबको खूब हंसाया। सारे बच्चे पढ़ने लगे। मिनी सारे बच्चों को मन लगाकर पढ़ाती, पढ़ाने के साथ उन्हें वो गीत सिखाती, कहानी सुनाती, अच्छी अच्छी बातें बताती। देखो बच्चों, कभी चोरी मत करना, चोरी करना बुरी बात है, झूठ मत बोलना, कभी किसी को दुख मत देना। बच्चे उसकी बात सुनते, बच्चे खूब होशियार हो गए थे, सारे जानवर बहुत खुश थे। एक दिन मिनी ने सोचा कि मैं बच्चों को झरने के पास ले जाऊं और उनको वहां घुमाऊं। मिनी ने अपने पड़ोसियों को बात बताई कि मैं बच्चों को लेकर झरने पर पिकनिक मनाने जाना चाहती हूं, क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। मिनी सारे बच्चों से कहा, देखो बच्चों रास्ते में तुम इधर उधर कहीं मत जाना, सब लाइन से चलना। बच्चों का जी हम सब लाइन से चलेंगे। सारे बच्चे लाइन बनाकर गए झरने के पास। सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही थी, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चे दौड़े, खूब खेले कूदे। खेलने के बाद बच्चों को भूख लगाई। मीने ने सारे बच्चों से कहा, आप लोग गोला बनाकर बैठ जाइए, मैं अभी सबको नाश्ता कराती हूँ। मीने ने सारे बच्चों को गोले में बैठा दिया। बच्चे नाश्ता करने लगे, तभी मीनी ने देखा कि खरगोश के दो बच्चे तो है ही नहीं, अब ये कहाँ चलेगा? मिनी सोचने लगी। उसने धीरे से इशारे से टिंकू पिंकू को बुलाया, कहा बेटा तुम जाओ और पता लगाओ ये दोनों बच्चे कहाँ हैं। जी माँ हम अभी पता लगा कर आते हैं। टिंकू ने पिंकू से कहा, देखो पिंकू मैं जा रहा हूँ दाई की तरफ और तुम जाओ बाई की तरफ, हम लोग ढूंढ कर आते हैं फिर यहीं पर मिलते हैं। दोनों चले गए। लौट कर आए तो पिंकू ने बताया कि भैया मैंने देखा वो दोनों बच्चे जो हैं उनको अजगर रोके हुए, बड़ा मोटा सा अजगर है, बच्चे खूब रो रहे हैं, अब हम लोग कैसे उनको बचाएंगे अजगर से? कोई बात नहीं है, हमें घबराना नहीं चाहिए, माँ ने कहा था ना कि कभी भी मुसीबत पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। हाँ भैया पर हम करेंगे क्या? यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उसे बुलाया और कान में धीरे से कुछ समझाया। इसके बाद टिंकू जाकर अजगर से कहने लगा, राम राम दादा। जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, वो जोर से चिल्लाने वाले थे, उसने इशारे से मना कर दिया कि बोलना नहीं नहीं अजगर समझ जाएगा। बच्चे चुप हो गए। उसने कहा, अजगर दादा इनको क्यों रोके हुए हो? मुझे भूख लगी है, लेकिन ये बच्चे से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और वह बहुत सारे खरगोश हैं, तुम उनको खाना, तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे, उनको दावत मिले। हाँ हाँ हाँ चलो, मैं कैसे मान लूँ, पर मैं जाऊंगा कैसे, ये मेरे शिकार भाग जाएंगे। अरे भाई मैं इनको देखता रहूंगा, आप चलिए तो सही। उसे अजगर छोड़कर चला गया। रास्ते में पहले से ही पिंकू ने वहाँ कांटे बिछा दिए थे। अजगर गया, उसने देखा नहीं, वो तो खुश होकर जा रहा था कि रास्ते में बहुत सारे खरगोश मिलेंगे, मेरे बच्चों की दावत होगी, लेकिन कांटों से वो बिलबिला गया दर्द से। लौटा और सोचने लगा कि मेरे वो शिकार भी भाग गए होंगे, हिरन के बच्चा मुझे बेवकूफ बना गया। इधर चीना ने जल्दी से कहा, भागो भागो भागो। सारे बच्चे भागे दोनों और वहाँ पहुँचे, सबने देखा, सब खुश हो गए, सबने ताली बजाई, वो बच्चे रो रहे थे। मैडम मैंने बहुत बड़ी गलती करी, हमने आपका कहना ही नहीं माना, हम भाग गए थे, हमको जाना नहीं चाहिए था, हम कभी नहीं जाएंगे, हम कान पकड़ते। कोई बात नहीं, मिनी ने उन्हें प्यार से चिपका लिया, चुप कराया और खाने को दिया। मिनी ने समझाया कि देखो अगर इन्होंने बुद्धि से काम ना लिया हुआ तो समझदारी से टिंकू पिंकू ने काम ना किया होता तो अजगर तुम्हें खा गया होता। सभी ने उन बच्चों की तारीफ करी। सभी बच्चे जो थे वो कहने लगे, अब हम लोग घर वापस चलेंगे। हाँ हाँ चलो हम सब घर चलते हैं। बच्चे ताली बजा बजा कर गाने लगे और कहने लगे कि हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमें बड़ों ने मना किया है। वो कह रहे थे कि बड़ों का कहना सदा मानना, मना किया वहाँ कभी ना जाना, मुसीबत में मत घबराना, समझदारी से काम लेना। कहते हुए हंसते खेलते बच्चे अपने अपने घरों को आ गए।

0: सभी टाटा बाय बाय कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि हमें भी टिंकू पिंकू की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी ना? फिर अगली कहानी दोबारा सुनाऊंगी।
1: तो बच्चों अभी आप सुन रहे थे कहानी समझदार रिंकू पिंकू, है ना, और इसे सुना रही थी जयश्री श्रीवास्तव दीदी। तो भाई आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि बिना पूछे बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी कहानी थी, और ये कहानी हमने आपके ही अनुरोध पर दोबारा सुनवाई है ना। तो बहुत अच्छी कहानी, तो एक बार इस कहानी के लिए भी क्लैपिंग हो जानी।

0: सोचे समझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी कहानी थी, और ये कहानी हमने आपके ही अनुरोध पर दोबारा सुनवाई है ना, तो बहुत अच्छी कहानी। तो एक बार इस कहानी के लिए भी क्लैपिंग हो जानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और दीदी,
1: और दीदी अब जैसा कि हमारा चंक है शब्द ज्ञान का, तो बच्चों को वो भी बता दीजिए आप।
0: भाई हम हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं बच्चों की डिक्शनरी के लिए, यानी जो खूब ज्यादा सी भर जाए, है ना। हाँ, तो भाई आज हम इंग्लिश का सबसे पहले अंग्रेजी शब्द ज्ञान बताएंगे, रिनेंज, ठीक है। और इसका जो है सिंपल अर्थ है सबसे पहले कि अपने वादे से मुकर ना जाना, यानी जैसे अपना वादा लोग पूरा नहीं कर पाते और मुकर जाते हैं, अपना कहा हुआ वचन नहीं निभाते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं, तो ये गलत बात है ना। हमेशा सोचना चाहिए कि अगर हमने प्रॉमिस किया है, कोई भी अगर हमने वादा किया है, तो उसको निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और इसके लिए देखो हम ये भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ही प्रॉमिस टू हेल्प बट ही रिनेंज एट द लास्ट मोमेंट, ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, है ना। तो भाई आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि अपनी प्रॉमिस को हमेशा निभाने की कोशिश करिए। और आज का हिंदी ज्ञान है वैदग्ध्य, तो हमारी रचना दीदी बताएंगी।
1: तो बच्चों वैदग्ध्य का अर्थ है चतुराई, निपुणता, बुद्धिमत्ता और किसी कार्य को कुशलता व सौंदर्य यानी सुंदर ढंग से करने की क्षमता।
0: बिल्कुल,
1: यानी बहुत सारा कि आप जैसे किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, जैसे उसके भाषण में वैदग्ध्य झलकता है, उसके भाषण में कुशलता और गहराई समझ से दिखाई पड़ती है। कवि ने अपने वैदग्ध्य से साधारण विषय को भी रोचक बना दिया,
0: सुंदर बना दिया।
1: वो इस तरह से उसमें रस, छंद, अलंकार, सारी चीजें जो है मिला देता है, तो वो चीजें बहुत सुंदर लगने लगती है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इसको कहते हैं बच्चों वैदग्ध्य। और दीदी अब छोटे से प्यारे से बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं एक गाने का, तो प्यारा सा गीत सुना दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

0: चले। भाई
1: दीदी
0: बच्चों,
1: देखिए संगठन में कितनी शक्ति
0: बिल्कुल
1: होती है
0: भाई,
1: ना।
0: यूनाइट होकर अगर कोई काम करेंगे ना रचना दीदी, तो सब पूरा होता है ना। और सब एक साथ मिलजुल कर फिर नए नए आइडियाज भी आते रहते हैं, तो
1: बिल्कुल,
0: भाई मिलजुल कर ही काम
1: अगर
0: करना
1: हम टीम
0: चाहिए।
1: वर्क में कुछ
0: हाँ
1: काम करते हैं,
0: हाँ
1: सब दोस्त लोग मिल के काम करते हैं, तो
0: हाँ
1: कुछ एक नया इतिहास बन जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और रचना दीदी, अब जो हमारी ये दो बच्चे बैठे हुए हैं नए साथी,
1: हाँ,
0: तो
1: अब
0: इनसे
1: इन
0: कुछ और
1: इनकी
0: बातचीत कर ली
1: बारी फिर
0: जाए।
1: से आ जाती है, तो अब शान्विता की बारी आती है।
0: हाँ,
1: शान्विता आप बताइए, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है?
2: मटर पनीर,
0: अरे
1: आपको
0: मटर
1: भी
0: पनीर
1: मटर
0: इनको भी
1: पनीर
0: पसंद।
1: बहुत है, अरे वाह।
0: ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी लगती है क्या? क्या ग्रीन वेजिटेबल इसमें अच्छी लगती है?
2: भिंडी,
0: भिंडी। अरे
1: अरे
0: वाह, बच्चों
1: वाह,
0: को भिंडी
1: भिंडी
0: तो
1: तो मुझे भी
0: हाँ,
1: पसंद है
0: भिंडी
1: दीदी,
0: तो बच्चों
1: मैं
0: को
1: भी
0: अच्छी
1: बहुत
0: लगती
1: प्रेम
0: है।
1: से खाती
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: आपको और क्या पसंद है? आपकी हॉबीज क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए आप, शान्विता
1: बताइए।
0: आप बताइए। हाँ, आपकी क्या हॉबीज है, क्या क्या पसंद है आपको उसमें,
1: खेल में क्या
0: खेल में
1: पसंद
0: क्या पसंद
1: है,
0: है? और
1: म्यूजिक सुनना
0: आपको,
1: पसंद है कि
0: हाँ
1: नहीं है,
0: बताओ
1: डांस पसंद है कि नहीं,
0: बताओ।
1: बताइए।
2: मुझे म्यूजिक और डांस पसंद है, और खेल में टीचर टीचर।
0: अच्छा,
1: अरे
0: टीचर
1: वाह,
0: टीचर
1: टीचर
0: पसंद
1: टीचर
0: है।
1: पसंद है, यानी आगे चल के ये टीचर
0: टीचर
1: बनना चाहती
0: बनेंगी।
1: है।
0: हाँ,
1: और अवंतिका आप क्या बनना चाहती है आगे चल के? नहीं,
0: आप क्या, आपको भी टीचर टीचर टीचर अच्छा लगता है? हाँ,
2: आर्मी।
0: आर्मी में जाना चाहती हैं? अरे
1: अरे
0: वाह भाई, तो
1: वाह।
0: इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आप पढ़ाई खूब अच्छी सी करिए, तभी आर्मी में आप जाएंगे, और आप भी खूब पढ़ाई करिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे, है ना। तो भाई चलिए, शान्विता कुछ और सुनाना चाहती
1: सुनाना
0: हैं।
1: चाहती है तो
0: हाँ
1: इनसे
0: रचना
1: सुन
0: दीदी,
1: लेते हैं।
0: तो सुनते हैं।
1: हाँ बताइए आप।
2: मैं एक कहानी सुनाना चाहती
1: हाँ
2: हूँ।
0: अच्छा,
2: सुनाइए
0: चलिए
2: जल्दी से।
0: सुनाइए।
2: एक बार की बात है, एक राजा थे, उनके दो सिपाही थे, खरगोश और खुश कछुआ।
0: अच्छा
2: उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी,
0: हाँ,
2: तो राजा ने सोचा कि इनकी दोस्ती टूटवानी पड़ेगी।
0: अच्छा
2: तो उनने कहा कि जो इस पेड़ से उस पेड़ तक जाएगा
0: हाँ
2: वो होगा विजेता,
0: अच्छा
2: इनाम मिलेगा उसे।
0: हाँ।
2: कछुआ जो था वो सोचा कि यार मैं तो धीरे चलता हूँ, तो उसने हार नहीं मानी। खरगोश का मैं तो तेज हूँ, मैं जीत जाऊंगा।
0: हाँ
2: खरगोश तेज चलने लगा,
0: अच्छा,
2: कछुआ धीमे धीमे चलने लगा।
0: अरे वाह।
2: खरगोश देखा पीछे कि अभी तो आया नहीं है, चले थोड़ा आराम कर लूँ, तो उसने एक पेड़ पे बैठ के आराम करने लगा। कछुआ जब वहां तक आया तो उसने खरगोश को बिल्कुल भी नहीं उठाया, मतलब
0: अच्छा
2: बातचीत भी नहीं की, वो धीरे धीरे आगे चला गया। और जब खरगोश की नींद खुली तब उसने देखा, अरे कछुआ तो अभी तक नहीं आया।
0: हाँ,
2: तब वो आगे चल के देखा कि कछुआ तो विजेता हो गया है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत
1: बहुत
0: अच्छी बात
1: अच्छी
0: है।
1: बात है।
0: देखो कितनी अच्छी कहानी सुनाई, कि पैर उसने खरगोश ने अहम किया कि मैं तो जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ, कछुए ने कहा अरे मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा,
1: कोशिश करता
0: और
1: रहूंगा,
0: कोशिश करने वालों की
1: मालूम कि
0: हार
1: हार कभी नहीं
0: कभी
1: होती।
0: नहीं
1: इसलिए
0: होती।
1: बच्चों हमेशा जो
0: हाँ
1: है प्रेरणा लेनी चाहिए कि भले ही हम काम धीरे करें
0: हाँ
1: लेकिन अच्छा करें।
0: भाई, तो क्लैपिंग होनी चाहिए ना
1: हाँ
0: रचना
1: बिल्कुल
0: दीदी,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: कितनी अच्छी कहानी
1: हाँ,
0: सुनाई।
1: शान्विता ने बहुत अच्छी
0: हाँ,
1: कहानी सुनाई, और
0: और
1: अब अवंतिका की बारी है, क्योंकि उनको भी कहानी सुनानी है, तो
0: चलिए
1: बताइए कहानी।
0: हाँ सुनाइए अवंतिका, सुनाइए।
2: एक साधु बाबा थे, मतलब बहुत तपस्या करते थे, तो जब मतलब चट्टान पे तपस्या करते थे, तो
0: अच्छा
2: चट्टान के नीचे एक
0: हाँ
2: चूहा रहता था। तो वो साधु बाबा एक दिन तपस्या कर रहे थे, चूहा अपने फिर बिल से एक दिन बाहर निकला और वो मतलब घूमने लगा, तभी उसको एक जंगली बिल्ली ने देख लिया।

0: और तो जंगली बिल्ली उसको दौड़ाने लगी, तो वो बचने के लिए साधु बाबा के गोदी में कूद गया। साधु बाबा की तपस्या भी पूरी हो गई थी। तभी फिर उसने बोला, मुझे इससे बचा लो। तो साधु बाबा ने उसको उससे बिल्ली बड़ी बिल्ली बना दिया। तो अब अपने से बड़ी बिल्ली को देख के दूसरी बिल्ली डर के मारे भाग गई।
1: हाँ।
0: तो अब उसको बिल्ली से डर था नहीं।
1: हाँ।
0: तो वो चल पड़ा रोड पर। तभी उसको एक कुत्ते ने देख लिया।
1: हाँ।
0: तो कुत्ता भी उसको फिर से दौड़ाने लगा।
1: हाँ।
0: तो वो फिर से साधु बाबा के पास गया और बोला, मुझे इससे बचा लो। तो साधु बाबा ने उसको भी उसको फिर से कुत्ता बना दिया,
1: यानी बड़ा वाला, है ना?
0: बड़ा वाला।
1: हाँ, ठीक। फिर
0: तो अब फिर से अपने से बड़े वाले कुत्ते को देखकर दूसरा कुत्ता डर के मारे फिर से भाग गया।
1: अच्छा,
0: अब वो अब उसको ना बिल्ली से डर था ना ही कुत्तों से। तो चला गया जंगल में।
1: अच्छा।
0: पर एक दिन उसको जंगल में एक शेर देख लिया। शेर उसको दौड़ाने लगा।
1: अरे बाबा।
0: तो वो जल्दी जल्दी भागा।
1: हाँ।
0: और गया फिर से साधु बाबा के पास।
1: हाँ।
0: और बोला, मुझे इससे बचा लो। तो साधु बाबा ने उसको बब्बर शेर बना दिया।
1: अरे वाह, बब्बर शेर। तो बब्बर शेर से सभी डरते हैं।
2: सभी डरते हैं।
1: हाँ, फिर क्या हुआ?
0: फिर वो अब वो तो चूहा है, वो शेर तो बन गया अब, पर वो तो चूहा है, उसको शिकार करने आता नहीं था और वो भूख से मर भी रहा था। तो उसने सोचा, साधु बाबा तो बस तपस्या ही कर रहे हैं, उनको ही जाके खा लेता हूँ।
1: अरे
2: तो देखिए, उसने गलत काम कर
1: गलत
2: दिया।
1: काम कर दिया। फिर क्या हुआ?
0: फिर वो धीरे धीरे गया और साधु बाबा के ऊपर झपट्टा मार दिया। तभी साधु बाबा की तपस्या भंग हो गई। तो साधु बाबा ने उसको बोला, ये फिर से चूहा बन जाए। तो वो चूहा बन के जमीन पर गिर गया।
1: गिर गया चूहा बन के।
2: गलत काम का गलत नतीजा होता
1: है। अंदर से तो चूहा था, कोशिश उसने बहुत की कि हमें वो हो जाए, और साधु बाबा ने उसकी मदद भी की,
2: हर बार मदद की। लेकिन ये कहना चाहिए ना कि हमेशा गलत चीजों का बार बार उपयोग अगर सही चीजों का करोगे तो अंत में हानि हमें उठानी पड़ती है।
1: अब देखो, मेरे को साधु बाबा पे ही झपट पड़ा है ना, भूख लगी थी।
2: तो दीदी, इन्होंने भी बहुत अच्छी कहानी सीख दी। तो अवंतिका और शान्विता के लिए जोरदार क्लैपिंग।
1: बहुत अच्छी कहानी दोनों बच्चों ने सुनाई, और हमारे जो बच्चे हैं उन लोग भी इससे जो इंस्पायर होंगे, यानी इससे प्रेरणा लेंगे कि कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, है ना?
2: और आप, कोई गलत काम भी नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है दीदी, हम लोग जैसे मित्रता की बात कर रहे थे, तो जैसे हमारा मित्र दोस्त बहुत पढ़ाई करने में अच्छा है, तो कभी कभी क्या करते हैं कि नोट्स छुपा लेते हैं, या उसका पेन छुपा देंगे या बैग छुपा देंगे। तो वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बच्चों, हमेशा जलन भी नहीं रखनी चाहिए। आप हमेशा जो भी काम करें वो सोच समझ के अच्छे ढंग से करें। और अब हमारा प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पर आमंत्रित करने का।
1: हाँ।
2: तो कभी भी आप कोई भी बच्चे यहाँ आना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक के बीच में ऑफिस टाइम में आके मिल सकते हैं और आकर के अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: है ना?
1: और हमें तो इंतजार ही रहता है अपने नन्हे मुन्ने
2: बच्चों का।
1: तो भाई देखिए दीदी, हमारी घड़ी भी कह रही है कि अब नन्हे मुन्नों को भी विदा किया जाए और हम लोग भी चले अपने घर, है ना?
2: तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।

अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। अब से 12 थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाकिर हुसैन का तबला वादन। लोकगीतों के कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर कलाकार होंगे मोहनलाल कांचकार, संगीता राय, सरोज सिन्हा। श्रोता अपने पसंद के फिल्मी गाने सुन सकते हैं फोन इन प्रोग्राम हेलो अनुरोध में समय दिन में 15:15। शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। इसमें प्रसारित करेंगे समर प्रताप सिंह की बाल कहानी मूर्ख चोर। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 युवा साथी सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो युवा। पंचायत घर शाम 6:30 इसमें ग्रामीण भाइयों के लिए लेकर आएंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता बारिश के मौसम में नाक कान व गले में होने वाली आम समस्याएं एवं उनका निदान। साथ ही धर्मदीन यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे अपने पत्रों के उत्तर। कार्यक्रम होगा चिट्ठी आई है। साप्ताहिक कार्यक्रम आज इतवार है रात 8:30। इसमें हम आपको सुनवाएंगे कृष्ण मोहन मिश्रा की लिखी झलकी हवाई उड़ान। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। पहली सूचना है थाना बागराय प्रतापगढ़ से। संजू यादव सूचित करते हैं सुभाष यादव सूचित करते हैं उनकी पत्नी संजू यादव, उम्र 26 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। ये दिनांक 21 जून 2026 से रात लगभग 1 बजे से अपने निवास स्थान शिवगढ़ पट्टी बागराय जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। ये सूचना है थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ से। शीला देवी, उम्र 50 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इनके दाहिने होंठ पर कटे का निशान है। ये दिनांक 29 जुलाई 2026 से अपने निवास स्थान बरगद हीराज बाबू थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके लिए विशेष बात यह है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रयागराज को सूचित करें। अर्चना देवी, पत्नी विनोद कुमार पाल, उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये दिनांक 13 जून 2026 से अपने निवास स्थान संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में

बिना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। आइए सुनते हैं इनका राग जतताल में तबला।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर राग जतताल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। ये है कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम आया सावन झूमके।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम आए दिन बाहर के। आनंद बख्शी का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गाना, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम जुर्माना।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह का लिखा गाना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शागिर्द। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, युगल आवाजें उदित नारायण लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दिल तो पागल है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है।

0: हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसुलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
0: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज

वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का नई दिल्ली से आगाज़ किया। ये मुहिम 2047 तक मुंशियात से पाक हिंदुस्तान और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मकसद को हासिल करने की तरफ ले जाने वाली अवामी शराकतदारी की एक बड़ी तहरीक है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम सब एक अजीम और अहम करारदाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम जिस मुहिम का मुशाहिदा कर रहे हैं वो फ़र्द के लिए है, ख़ानदान के लिए है, मुआशरे के लिए है और सबसे अहम बात यह है कि ये कौम के लिए है। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 इतवार मुंशियात से पाक हिंदुस्तान की तरफ 100 मजबूत कदम होंगे।

0: आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लाखों तुलबा ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज ने हमेशा मुंशियात की लत को एक बुराई के तौर पर देखा है। हमारे संतों और गुरुओं ने हमें इसके खिलाफ खबरदार किया है। हमारी सकाफत इसकी रोकथाम के लिए इंतबाहात भी फराहम करती है और अगर नशे की नशोनुमा होती है तो उस पर काबू पाने के तरीके भी फराहम करती है। मुआशरे की हिमायत, योगा और मुराकबा की ताकत नशे के खिलाफ हमारे बातिन को मजबूत करती है। वजीर आजम ने कहा,
1: देश विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे।
0: इस प्रोग्राम में 28,000 मकामात से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 5,000 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीतने पर गुलवीर सिंह को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह कामयाबी कॉमनवेल्थ गेम्स के इस यूनिट में हिंदुस्तान का पहला तमगा है और इसकी पिछली कामयाबी के बाद उनके सफर में एक और काबिल फख्र बाप का इजाफा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गुलवीर सिंह को मुबारकबाद दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। इससे कबल कुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की थी। वो एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स के 2 तमगे जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने अपने 17 इजला को छतों पर सोलर प्लांट्स की तंसीब के लिए मुल्क के टॉप 100 की फेहरिस्त में शामिल कराया है। इस फेहरिस्त में लखनऊ ने पहला मकाम हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
2: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: रियासती मुकन्ना का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है। इजलास के दौरान रियासती हुकूमत मंगल को जिमनी बजट पेश करेगी। आज दोपहर वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़िद होगी जिसमें सेशन के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग से पहले असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। मॉनसून इजलास 6 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी पसंद और कौमी परचम के खालिक पिंगली वेंकैया को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि अजीम आज़ादी के जंगजू पिंगली वेंकैया के यौम पैदाइश पर आजिज़ाना खराज अकीदत, जिसने तिरंगे को हिंदुस्तान के फख्र और शान की शक्ल दी। सावन के महीने के दौरान अकीदतमंद रियासत के तमाम शिव मंदिरों में दर्शन, पूजा और जलाभिषेक के लिए आते हैं। दरियसना सावन के पहले पीर को कल रियासत भर के बड़े शिव मंदिरों में कांवर यात्रियों की बड़ी तादाद के आने की तवक्को के पेश नज़र वसी हिफाजती इंतजाम और ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं। रियासत के कई अजला में आज से कल तक कई रास्तों पर गाड़ियों की नकल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश के महकमा सियाहत की पहल दी राइडिंग चैप्टर्स विजिट माई स्टेट के तहत आज सुबह दारुल हुकूमत लखनऊ के 1090 चौराहे से तारीखी कलिंजर किले तक मोटरसाइकिल का सफर शुरू किया गया। सियाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने बाइक सवारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और महकमा मौसमियात ने आज से शुरू होने वाले अगले 4 दिनों तक रियासत में मानसून की सरगर्मियों में इजाफे की पेशगोई की है। महकमे ने रियासत के कई हिस्सों में 5 अगस्त तक भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान रियासत में कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आप श्रोता सुने फोन इन प्रोग्राम हेलो अनुरोध, प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम। हेलो,
1: हाँ मैम, नमस्ते। मौसम
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: बोल रहे हैं मैम,
0: मौसम जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: विंध्याचल से मैम।
0: जी विंध्याचल से मौसम जी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, तो बताइए मौसम जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता, गाने को बोले है साजन साजन।
0: साजन साजन वाला गाना सुनना है मौसम जी ने। तो मौसम जी इस गाने को किसी को सुनवाना चाहती हैं, या कोई नाम अगर आपको लेना है तो आप जरूर ले सकती हैं।
1: मेरे दीदी का नाम है परमिला, जीजा का नाम है मनोज, भाई का नाम है दीदी और छोटा का नाम है अजय।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का दिल का रिश्ता फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार,
1: मेरा नाम नितेश आर्या है।
0: जी नीतीश आर्या जी, बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है मजबूरी।
0: मजबूरी, वैसे मैं आपको
1: जी
0: बताऊं मजबूर फिल्म है ये।
1: हाँ, फिल्म का नाम है मजबूर।
0: जी जी बताइए गाना।
1: गाने बोले रिमझिम बरसता बाहर से पानी अंदर आग लगी है।
0: मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना है।
1: जी जी बारिश गाना बहुत अच्छे, ये सब गाने बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश के
0: जी
1: ऊपर ये
0: जी
1: गाना बनाया गया है।
0: जी जी बारिश के ऊपर ये गाना है, और बरसात जब होती है तो मन कभी करता है कि हम इस तरह के गानों को सुनें।
1: जी
0: तो नीतीश जी, नाम तो नहीं लेना आपने किसी का?
1: जी हमारे विकास जी।
0: बस विकास जी।
1: जी जी आपके लगला कॉलर है और आपके कार्यक्रम भी बहुत सुनते हैं हम लोग सारे
0: जी
1: दोस्त मिलकर।
0: अच्छा, कितने दोस्त हैं आप लोग?
1: हमारे कई दोस्त हैं जो अभी प्रयाग से बाहर भी जो रहते वो भी सुनते हैं, और हमारे प्रयाग में विकास जी तो हमारे बचपन के साथी हैं।
0: अच्छा, चलिए तो विकास जी और नीतीश जी दोनों मिलकर सुनिए मजबूर फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज निधि कला बनपुकरा से पवन निषाद बोल रहा है मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: राजा हिंदुस्तानी का।
0: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत के बोल बता दीजिए।
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
0: ये गीत जो है वो उदित नारायण की आवाज में भी है और अलका याग्निक की, तो आप किसकी आवाज में सुनेंगे?
1: उदित नारायण जी का।
0: उदित नारायण जी का गाया हुआ गीत पवन जी ने पसंद किया है। फिल्म का नाम
1: दोस्तों
0: है,
1: नाम लेना चाहते हैं मैम?
0: जी जी राजा हिंदुस्तानी। तो आइए आपके पहले दोस्तों के नाम सुन लेते हैं। बताइए कौन कौन दोस्त हैं आपके?
1: दीपक निषाद है, पिंटू निषाद, मठल्लू निषाद।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अनिरोध और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए
1: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी। चांदनी फिल्म का सुनवा दीजिएगा, लगी आ सावन की फिर वो जड़ी है।
0: सुरेश वाडिकर साहब की आवाज में ये गाना है।
1: हाँ जी, हमारे यहाँ पे एक हल्की हल्की तीन चार दिन से बारिश हो रही है।
0: जी जी जी, बारिश का मौसम है और बहुत ही लुभावना मौसम इस समय, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है।
1: हाँ जी, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मधु जी मुझे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही हमें
1: कॉल करिए। मैं आपको बताऊँ
0: जी,
1: मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनने की वजह से हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं।
0: जी जी
1: हाँ, और जब भी किसी आकाशवाणी केंद्र पे हमारी बात हो जाती है ना
0: जी जी,
1: और हमारा कॉल रिकॉर्ड हो जाता है तो और भी अच्छा लगता है।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से फ़ोन आता है, विभिन्न शहरों से फ़ोन आता है। ये प्रोग्राम जो है सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है, बहुत जगह से हमें फ़ोन आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि श्रोता इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। तो आइए
1: और एक बात और मधु जी मैं बताना चाहूँगा आपको।
0: जी बताइए।
1: 2026 1 जनवरी 2026 से मैं अपने फोन कॉल्स का रिकॉर्ड रख रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: जिस भी आकाशवाणी केंद्र पे मेरी लाइव प्रोग्राम या फिर रिकॉर्डेड वाले में बात होती है
0: जी जी,
1: और जब कॉल प्रसारित होता है ना,
0: हाँ जी,
1: तो उसको मैं एक डायरी में लिखित में रखा हुआ हूँ।
0: वाह भाई वाह,
1: हाँ जी, तो अभी
0: है।
1: तक मतलब मेरे 1000 कॉल हो चुके हैं।
0: क्या बात है, ये देखिए आप कितना मतलब आकाशवाणी से आपका जुड़ाव है कि आप उसको डायरी में आपने मेंटेन किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, तारीख के साथ में लिखता हूँ मैं जब कॉल प्रसारित होता है उसको।
0: अच्छा अच्छा, चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और अब हम सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का ये गाना।

0: श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो अनिरुद्ध आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: और मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी कि 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर चल रहा श्रोताओं का मनपसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम से मैं हूँ राजेंद्र, अपनी मन पसंदीदा फरमाइश को लेकर गुतनी कुंडा प्रतापगढ़ में। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, तो बताइए अपनी मन पसंद फरमाइश।
1: फिल्म आपकी कसम से, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो कभी नहीं आते। आकाशवाणी का जुनून आज से आंसू बन के बह गया, आकाशवाणी का जुनून आज से आंसू बन के बह गया। एक गम सा छाया रहेगा रेडियो को देख के जाते जाते ये कह गया, क्योंकि विविध भारती के पुराने कार्यक्रम अब रेडियो के नहीं बस दिल में एक यादगार बन के रह गया।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी बात कही राजेंद्र जी ने। तो हम इस बात पे आपको सुनवा देते हैं आपकी कसम फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: परम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: दीदी आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, आपसे वार्तालाप होती है तो बहुत ही खुशी और प्रसन्नता हो जाती है। और हमारी प्रसन्नता ये

0: आप इतने ढंग से इतने तरीके से सुनवाती हैं कि बस आनंद आ जाता है
1: जी। बताइए तो फिर आज आपने कौन सा गाना चुना है?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, एक पुरानी फिल्म है बहू बेगम।
1: जी जी मीना कुमारी जी की थी
0: जी। इसमें बहुत ही सुंदर एक श्रावण का गीत है, पड़ गए झूले सावन तू आई रे, पड़ गए।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। आप शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने मथुरा से फरमाइश की है इस गाने की, तो आपको सुनवाया जाए।
0: जी नाम लेता हूँ
1: जी।
0: गुलाब।

0: क्या बात है,
1: बड़े।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने मथुरा से फरमाइश की है इस गाने की, तो आपको सुनवाया जाए।
1: जी नाम लेता हूँ
0: जी
1: गुलाब प्रजापति, बाबूगंज से हैं, राजेंद्र जी हैं और विकास जी हैं, साथ में हमारे नाम है राकेश कुमार भैया मेजर से, हमारी भतीजी नीलम प्रजापति है, सिद्धार्थ प्रजापति और कौशल सिंह श्री जी इन सभी के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी प्रयागराज से आरणी मधु दीदी के साथ में सभी सम्मानित श्रोता आ मिले।
0: तो सुनिए बहू बेगम फिल्म का ये गाना।

0: बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं राधनपुर प्रयाग का सिटर
0: जी
1: ड्राइवर।
0: जी विकास जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: मैडम जी, आवाम फिल्म का गाना है
0: जी,
1: और इससे गाने के बोल रहे ये रात ये बरसात।
0: हाँ, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना है।
1: जी जी ये बहुत ही अच्छा गाना है।
0: चलिए तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं आवाम फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: जी नमस्कार दीदी, मैं सुशील कुमार प्रतापगढ़ जिले से बोल रहा हूँ
0: नमस्कार
1: और
0: सुशील
1: सभी
0: जी।
1: लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार सुशील जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
1: हाँ दीदी, कुछ व्यस्तता थी इसी वजह से फोन नहीं कर पाया, और बाकी प्रोग्राम तो सुनते ही रहते हैं
0: जी
1: आपके।
0: जी सुशील जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी मुझे जो नई वाली फिल्म है प्रेम रतन धन पा

0: उनका टाइटल सॉन्ग भी नहीं सुनना है।
1: प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग सुशील जी सुनना चाहते हैं, तो सुशील जी अपने मित्रों के नाम भी लेना चाहते होंगे।
0: जी जी जी मेरे एक भाई हैं, भले ही बुजुर्ग हैं दीदी, लेकिन वो सुनते रहते हैं प्रोग्राम।
1: अच्छा,
0: नानू राम भाई उनका नाम है।
1: हुँ.
0: उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, नहीं तो वो फोन भी करते।
1: अच्छा अच्छा,
0: लेकिन वो सारे प्रोग्राम आपके सुनते रहते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि मोबाइल होने के बावजूद भी रेडियो का अपना ही एक अलग महत्व है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही कि रेडियो नहीं है लेकिन जिनको सुनना है वो कहीं भी जाके सुन लेंगे।
0: जी जी जी,
1: तो वो भी सुनेंगे ये कार्यक्रम।
0: बिल्कुल दीदी।
1: और कोई मित्र आज जिनका आप नाम लेना चाहते हो?
0: जी अभी तो दीदी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक कॉलर फोन करने का मौका मिले।
1: और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and addressed by Prime Minister Narendra Modi. Most of the students from Punjab-based universities, many of whom were NSS volunteers also, were of the opinion that it is the collective responsibility of the society to promote such campaigns for drug-free country. Piyush Saini from Lovely Professional University, Phagwara, said that they have taken a pledge for Nasha Mukt Bharat.
2: Today, under the Nasha Mukti Yuva Abhiyan organized by Prime Minister Shri Narendra Modi, I, along with my friend and fellow students, have taken a pledge towards a drug-free India. Now, our responsibility is to not only stay away from drugs ourselves, but also to encourage people around us and our relatives to join this mission and move forward towards a developed India.
0: President Draupadi Murmu flagged off a run PBG soldier

0: चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8

0: लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की 6वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी हैं। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में

0: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं मोहनलाल कांशकार और साथी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में दादरा।

अभी आप सुन रहे थे मोहनलाल कांशिकार और साथियों के स्वर में दादरा। आइए अब सुनते हैं कहरवा।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं मोहनलाल कांशकार और साथ ही संगीता राय और सरोज सिन्हा। अभी आप सुन रहे थे मोहनलाल कांशकार और साथियों के स्वर में कहरवा। आइए अब सुनते हैं संगीता राय के स्वर में कजरी।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता राय के स्वर में खेमटा। आइए आप सुनते हैं सरोज सिन्हा के स्वर में दादरा।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। आज कलाकार थे मोहनलाल कांशिकार और साथी संगीता राय और सरोज सिन्हा। आपने मोहनलाल कांशिकार और साथियों के स्वर में दादरा कहरवा सुना, संगीता राय के स्वर में कजरी और खेमटा और सरोज सिन्हा के स्वर में दादरा। आइए कार्यक्रम के अंत में सरोज सिन्हा के स्वर में सुनते हैं ये पूर्वी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत मीडियम वेव 252.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।